वंदे मातरम, सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूँ आप सभी का रेडियो साथी सैकत चटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन गुरुवार, अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की मई माह की 20 तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की वैशाख माह की 30वीं तारीख। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आइए दोस्तों, अब हम जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज

0: नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दोस्तों फिर से एक बार वापस जुड़ते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से FM के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। आइए दोस्तों अब आकाशवाणी के केंद्र से डाल्टनगंज केंद्र से जुड़कर हम बात करेंगे किसान भाइयों की, खेती खेत खलिहानों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है फसल अवशेषों का प्रबंधन। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
3: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों कार्यक्रम में आज बातें फसल अवशेषों के प्रबंधन की। जी हां ग्रामीण भाइयों, हमारे देश में पहले खेती केवल जीविकोपार्जन के लिए की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे खेती ने व्यवसाय का रूप ले लिया है। किसान अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मृदा के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। फसल अवशेष का जलना भी पर्यावरण और मृदा प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है। पिछले कुछ वर्षों में एक समस्या मुख्य रूप से देखी जा रही है कि जहां हार्वेस्टर के द्वारा फसलों की कटाई की जाती है, उन क्षेत्रों में खेतों में फसल के तने के अधिकतर भाग खेत में खड़े रह जाते हैं और वहां के किसान खेत में फसल के अवशेषों को आग लगाकर जला देते हैं। किसान भाइयों, फसल अवशेष पौधे का वह भाग होता है जो फसल की कटाई और गहाई के बाद खेत में छोड़

0: दिया जाता है। भूसा, तना, डंठल, पत्ते और छिलके वगैरह फसल अवशेष कहलाते हैं। सरसों, गेहूं, धान, ग्वार, मूंग, बाजरा, गन्ना और अन्य दूसरी फसलों से काफी मात्रा में फसल अवशेष मिलते हैं। सबसे ज्यादा फसल अवशेष अनाज वाली फसलों में और सबसे कम अवशेष दलहनी फसलों से मिलते हैं। फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने से मानव स्वास्थ्य पर हो रहे दुष्प्रभाव की समस्याएं बनी रहती है। वास्तव में ये एक गंभीर समस्या है। इसके साथ ही फसल अवशेष जलाने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव, मृदा में पर्यावरण का प्रभाव, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की कमी, साथ ही साथ जानवरों के लिए चारे की कमी। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, यदि किसान उपलब्ध फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनको वापस भूमि में मिला देते हैं तो अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फसल अवशेषों के मृदा में प्रयोग से कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता में वृद्धि की जा सकती है। कार्बनिक पदार्थ ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व फसलों को उपलब्ध हो पाते हैं। ये खेत में सड़कर मृदा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं। जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। फसल अवशेष से बने खाद में पोषक तत्वों का भंडार होता है। ग्रामीण भाइयों, अवशेषों को खेतों में प्रयोग करने से मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है। मृदा में फसल अवशेषों को मिलाने से मृदा की परत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से मृदा सतह की कठोरता कम होती है और जल धारण क्षमता और मृदा में वायु संचरण में वृद्धि होती है। अगर हम मृदा तापमान की बातें करें तो फसल अवशेष भूमि के तापमान को बनाए रखते हैं। फसल अवशेष को मृदा मिलाने से फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। भूमि में खरपतवारों के अंकुरण और बढ़वार में कमी आती है। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को उचित तरीके से प्रबंधन करने पर फसलों को मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फसल कटाई के उपरांत खेतों में पड़े पैरा या भूसा वगैरह को गहरी जुताई कर जमीन में दबा देने और उसमें पानी भर देने से फसल अवशेष कंपोस्ट में बदल जाते हैं। ग्रामीण भाइयों, फसल की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष घास, फूस, पत्तियां और ठूंठ वगैरह को सड़ाने के लिए किसान भाई 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़ककर कल्टीवेटर या रोटावेटर से काटकर मिट्टी में मिला सकते हैं। इस प्रकार अवशेष खेत में विघटित होना प्रारंभ कर देंगे और लगभग एक माह में स्वयं सड़कर आगे बोई जाने वाली फसल को पोषक तत्व प्रदान कर देंगे, क्योंकि कटाई के पश्चात दी गई नाइट्रोजन अवशेषों में सड़न की क्रिया को तेज कर देती है। फसल अवशेषों को जलाने से इनसे मिलने वाले लाभों से अक्सर किसान भाई वंचित रह जाते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है, क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले जीवाणु आग से जल जाते हैं। फसल अवशेषों को जलाने से नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है, इसलिए इनको जलाना नहीं चाहिए। ग्रामीण भाइयों, फसल कटाई के बाद अवशेषों को खेतों में ही इकट्ठा कर वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। फसल अवशेषों का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम अपनी जमीन में जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि कर जमीन को खेतियों के सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें फसल अवशेषों के प्रबंधन की। इसके साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार
1: दोस्तों, आइए अब सुनते हैं रामचरित मानस गान।
2: एपिसोड नंबर 153

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वन देवी और वन देवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं कार्यक्रम चिंतन से और सुनते हैं आत्मचिंतन विषय पर अनुपमा तिवारी की बातें।

हम अक्सर दूसरों के विषय में सोच सोच कर परेशान रहते हैं। उसने ये कहा, उसने वो कहा, वह ऐसा है, वह वैसा है। ऐसे विचार मन मस्तिष्क में खलल पैदा करते हैं, तनाव, चिंता, अवसाद का कारण बन जाते हैं। दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा है स्वयं का मूल्यांकन करना, आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन करना। हम क्या हैं, हमारे विचार, आचार, व्यवहार कैसे हैं, इसका चिंतन करना उचित है। यदि हम अपने विकारों को दूर करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तो हमारे विचारों में सकारात्मकता का संचार होता है, तन मन प्रफुल्लित होता है, सही निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, आत्म सुख की प्राप्ति होती है।

जब तक हम दूसरों की बातों की परवाह करते हैं, किसी की बातें हमें कचोटती है, रुलाती है, तो हमारे विचार कुंठित होने लगते हैं। और जैसे ही हम स्वयं में केंद्रित होते हैं, अपने भीतर के गुण अवगुण पर विचार

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना। आराधना के तहत आइए अब सुनते हैं हरिहरण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में यह खूबसूरत सा भक्ति गीत।

दोस्तों, हमारा कार्यक्रम आराधना जारी है। आइए इसके तहत अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और रोबिन चटर्जी की आवाज में यह भक्ति संगीत।

0: आइए दोस्तों, अब सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। विषय है तनाव प्रबंधन। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर दीपक सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज देखा जाए तो हर लोग किसी न किसी तरह से तनाव के वातावरण में जी रहा है। तनाव की प्रकृति अलग है। किसी व्यक्ति को पढ़ाई की चिंता हो रही है, किसी को कैरियर की चिंता हो रही है, किसी को ये लग रहा है कि हम जैसा चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो तनाव की प्रकृति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह की है। जब तनाव से हम घिर जाते हैं तो हम क्या करें, किस तरह से तनाव का प्रबंधन करें ताकि हम एक खुशहाल जीवन जी सकें, तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ CCL हॉस्पिटल गांधीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिंह उपस्थित हैं। दीपक साहब स्वागत है
2: जी। धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है, क्या मानते हैं आप?
2: जी आपने सही कहा, सभी तरफ तनाव व्याप्त है, लेकिन आजकल जैसा चल रहा है या लोगों का जैसा लाइफस्टाइल बना हुआ है उसमें तनाव नॉर्मल से ज़्यादा है। क्योंकि जैसे कोई भी जो इमोशन है, जैसे फियर है, एंग्जाइटी है, पेन है, ये सब एक तरह का नॉर्मल बेसिक इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं, लेकिन उसी में से एक तनाव भी है। कोई भी चीज़ होने से आदमी को थोड़ा सा तनाव होना स्वाभाविक है, जिससे कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर आ सके। लेकिन जो आजकल तनाव का लेवल है और तनाव के जो प्रकार हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आज का जो आधुनिक जीवन है उसमें चूँकि हम लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा कट गए हैं, मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे बहुत कम इंट्रैक्शन करते हैं, अपने चारों तरफ एक नया दुनिया बना लिए हैं जो कि एक आभासी दुनिया है। लोगों का जैसे डाटा हमेशा ऑन रहता है, दे ऑलवेज रिमेन बिजी इन देयर मोबाइल। तो इससे जो आजकल तनाव की जो प्रकार हैं और जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई।

0: जी, लोगों की इच्छाएं बहुत हो गई हैं
1: जी,
0: और लोग ज्यादा सपने बुनने लग गए हैं
1: जी,
0: कम समय में अधिक पाने की चाहत
1: जी,
0: ये कहीं ना कहीं तनाव को बढ़ावा दे रहा है डॉक्टर साहब।
1: हाँ एकदम आपने सही कहा, ये ऐसा हो रहा है क्योंकि आजकल ये हम एक तरह का इन्फोडेमिक आया हुआ है, मतलब इन्फॉर्मेशन का एक तरह का एपिडेमिक आया हुआ है, तो उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि डे टू डे लाइफ में हमारा कोई मतलब नहीं होता है, वो भी चूँकि मोबाइल के द्वारा और बाकी सब माध्यमों से हमें पता चल जाती हैं, तो उससे हमारे अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होता है, वही स्ट्रेस अल्टीमेटली हमें डिस्ट्रेस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वी ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दोज इश्यू एज वेल एज आजकल लोग अब के सपने बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पाना चाहते हैं, कम समय में पाना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ गोल को देखते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग करना चाहिए वो लोग नहीं करते हैं। जैसे अभी आप कोई भी फल लीजिए, फल भी अपना पकने में नेचुरली टाइम लेता है, तो ऐसे ही आदमी को भी या ह्यूमन बीइंग को लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए एक मेहनत करना चाहिए, एक टाइम लगता है उसमें, वो लोग उतना पेशेंस नहीं रखना चाहते, उससे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
0: जब हम चाहते हैं कि अमुक चीज़ हमें हासिल हो जाए और वो हमें हासिल नहीं हो पाती है, तो फिर हम तनाव में घिर जाते हैं
1: जी,
0: और यही तनाव हमें स्ट्रेस पैदा करता है
1: जी,
0: और फिर हम डिस्ट्रेस में चले जाते
1: जी
0: हैं। तो कैसे हम अपने आप को पहचान पाए कि अब हम तनाव के वातावरण में जीने लग गए हैं
1: जी,
0: अब हमें इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है?
1: देखिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन में आपका डे टू डे लाइफ हैम्पर होने लगे, जैसे आपको कितने समय उठना है, कितने समय खाना है, कितने समय अपना तैयार होकर ऑफिस जाना है, या जो भी आप जैसे छात्र हैं तो स्कूल जाना है, ये सब चीज़ें जब अफेक्टेड होने लगें और आपके आसपास के लोग भी इस तरह का आपको बोलने लगे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन में या आपकी बातों में कुछ चेंज आ गया है, तो देस वही टाइम होता है कि आप अवेयर हो जाएं अपने बारे में, मतलब एक तरह से आप उस समय एक एज पे हैं, एक किनारे पे हैं, जो कि जिसके आगे एक बहुत ज़्यादा बीमारी के रूप में तनाव है और उसके पीछे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है, तो जैसे ही इस तरह का आप रिकॉग्नाइज करते हैं वैसे ही आप संभल जाइए और अपना लाइफ स्टाइल में चेंज करिए, अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आप मनोवैज्ञानिक परामर्श भी ले सकते हैं।
0: कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाए, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाया जाए ताकि हम खुश रहें, और जब आप खुश रहते हैं तो बच्चे और परिवार भी खुश रहेंगे।
1: जी जी, इस कंडीशन से निकलने के कुछ बहुत बेसिक उपाय हैं, तो लोग उन्हीं को कर लें तो उनका सारा प्रॉब्लम दूर हो सकता है। जैसे आप आज के ज़माने के हिसाब से आप ऑनलाइन कम से कम रहिए, जब आपको ज़रूरत है तभी आप उसको यूज़ करिए और जिस पर्पज़ से वो चीज़ बना हुआ है उसी पर्पज़ से उसको यूज़ करिए। दूसरा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, फैमिली लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करिए, उनसे अपना मन का बात शेयर करिए, आप नेचर के करीब रहने की कोशिश करिए, तो इससे ही आपका जो तनाव प्रबंधन है वो एक हद तक अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा।
0: इस बदलती जीवन शैली में हमने अपना खान पान भी बिगाड़ लिया है
1: जी,
0: सही समय पर हम खाना नहीं खाते हैं
1: जी,
0: और जो भोजन करते हैं वो भी पौष्टिक नहीं होता
1: जी,
0: है, फास्ट फूड का हम सेवन करने लग गए हैं, और हमारे सोने का, बैठने का, उठने का जो समय है वो भी काफ़ी बदल गया है
1: जी।
0: तो कैसे इन सब चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ स्टाइल हम जीने की कोशिश करें?
1: जी जी, देखिए इसके लिए तो आपको अपना इच्छा शक्ति मजबूत करना होगा। जब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारे फैमिली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारे पर्सनल लाइफ को, सोशल लाइफ को, सब तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो वहीं पे आपको संभलने का ज़रूरत है। आप जो पहले से चीज़ें होती आई हैं आप बस वही करिए, उसी में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप टाइम से उठिए, टाइम से खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, इवन जो पहले चीज़ें होती थी, जैसे हमारा फैमिली में कुकिंग हो रहा है, सब लोग मिलके कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल है वो हम लोग साथ में मना रहे हैं, हम लोग आसपास कोई बाग है या इस तरह का कोई चीज़ है तो वहाँ पर हम लोग घूमने जा रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर इस तरह का, तो वो चीज़ें आप करिए, उसी में आपका ये जो भी तनाव से रिलेटेड हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन असल में आजकल क्या होता है कि लोग बाहर में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहता है, लोग हर चीज़ को फास्ट फूड स्टाइल में देखना चाहता है। जैसे अगर हमें तनाव हो रहा है तो बस कोई हमें एक कोई सेंटेंस बोल दे या कोई एक मेडिसिन टाइप का दे दे तो उसी से मेरा, मैं जो कर रहा हूँ वैसा ही करता रहूँ और बस ये दो चीज़ों से मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। उसके लिए लोगों को सेल्फ अवेयर होके अपना लाइफ स्टाइल में चेंज लाना होगा, तो चीज़ें विल चेंज बाय इटसेल्फ।
0: और मेडिकेशन के लिए आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बहुत लोग जब तनाव से घिर जाते हैं तो फिर गलत राह की ओर चले जाते हैं
1: जी,
0: और फिर वो दवाइयों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं।

0: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो जैसे जो भी हमारा तनाव होता है वो हर एक लोगों में अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट होता है। उसमें कॉमनली होता है कि लोगों को पेन का कंप्लेन होता है, किसी को पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है उसका कंप्लेन होता है, किसी का मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है उसका कंप्लेन होता है, किसी को सर दर्द होता है, किसी को अननेसरी चक्कर आने लगते हैं। तो उसमें लोग इधर उधर से बस यही एक साइन सिम्टम को लेके अपना सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे नींद नहीं आने लगता है तो लोग अपने से कोई भी नींद का दवा लेना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर उस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं उसके बावजूद अगर आपका जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है आप कोई मनोचिकित्सक से परामर्श लें और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लें। और
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। भेंट वार्ता का विषय था तनाव प्रबंधन। बात कर रहे थे डॉक्टर दीपक सिंह और उनसे बात कर रहे थे संजीव कुमार लाल। दोस्तों, अब वक्त हो चला है दिल्ली केंद्र से जुड़ने का, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे संस्कृत समाचार, हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कर लें।

0: ऐस्लैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीयसम्बन्धं हरितप्रौद्योगिकीं नवाचाररणनीतिकसहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचारविमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः नार्वेदेशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे तृतीयभारतनॉर्डिकशिखरसम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिकदेशानां नेतृभिस्सह संयुक्तपत्रकारसम्मेलनं सम्बोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नार्वे, स्वीडन्, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः

0: पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमार, उज्ज्वल निकम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 शताधिक 79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था

0: सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said, the PM's visit would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. Before arriving in Rome, the Prime Minister was in Oslo, Norway, where he participated in the 3rd India-Nordic Summit. This is the final leg of his 5-nation tour. Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the

दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज प्रादेशिक समाचार, जो रांची केंद्र से रिले किया गया था। माफ करेंगे, दिल्ली केंद्र से रिले किया गया था हिंदी और अंग्रेजी समाचार। 7:10 होने को है। आइए अब जान लेते हैं आज के प्रातकालीन सभा में होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 पर हम जुड़ेंगे पलाश कार्यक्रम से, जो कि हमारा लोक गीतों का कार्यक्रम है। पलाश के तहत हम सुनेंगे धर्मु नायक एवं साथियों की आवाज में कई खूबसूरत नागपुरी लोक गीत। लोक गीतों के बाद बारी आएगी सुगम संगीत की, और 7:45 पे हम सुनेंगे कार्यक्रम स्वर सरिता। स्वर सरिता के आज के हमारे कलाकार है बेगम अख्तर। दोस्तों, 8:00 का समय होगा फिर से एक बार दिल्ली केंद्र से जुड़ने का, जहां से हम सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पे सुनेंगे दिल्ली केंद्र से ही रिले मॉर्निंग न्यूज, जबकि 8:30 में जुड़ जाएंगे रांची केंद्र से और सुनेंगे रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। इसके बाद दोस्तों 8:45 का समय होगा वापस फिर से एक बार आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से जुड़ने का, जहां हम एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित गीत गुंजन। दोस्तों, गीत गुंजन के ठीक बाद यानी कि 9:00 हम जुड़ेंगे जोहार पलामू कार्यक्रम से। जोहार पलामू कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा मेरा यानी कि आप सभी का अपना रेडियो साथी सैकत चटर्जी का, जबकि संयोजन करता है संजीव कुमार लाल। दोस्तों, जोहार पलामू कार्यक्रम जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम जुड़ेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के साथ, और 9:30 पे हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1288वां कड़ी। साथियों, इसके बाद समय होगा दिल्ली केंद्र से जुड़ने का, जहां से 10:00 हम सुनेंगे हिंदी समाचार और 10:05 पे अंग्रेजी समाचार। सुनने के बाद 10:10 पे हम रुख करेंगे मुंबई की ओर, जहां से सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति सेलुलाइड के सितारे। दोस्तों, आगे का कार्यक्रम विविध भारती से ही होगा यानी कि 11:00 हम सुनेंगे नाट्य प्रस्तुति रंग तरंग। रंग तरंग के बाद विविध भारती की एक और यादगार कार्यक्रम आपके सामने होगा, और आप सुन सकेंगे 12:00 विविध भारती की प्रस्तुति यादों की महफिल। इसी तरह दोस्तों लगातार शाम 5:30 तक यानी 5:30 तक हम बारी बारी से जुड़ेंगे अपने दिल्ली रांची और मुंबई केंद्रों से, जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार अंग्रेजी समाचार प्रादेशिक समाचार और विविध भारती की प्रस्तुति सुरीला सफर। दोपहर सभा, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, आज के मेहमान और छाया गीत। दोस्तों, छाया गीत कार्यक्रम सुनने के बाद शाम 5:30 पर हम वापस एक बार जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर, और सुनेंगे सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं कार्यक्रम पलाश से, जो कि हमारा लोक गीतों का कार्यक्रम है। आज हम पलाश के तहत सुनेंगे धर्मु नायक एवं साथियों से नागपुरी लोक गीत।

दोस्तों, ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आइए पलाश के तहत सुनते हैं धर्मुनायक एवं साथियों को।

दोस्तों, ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आइए पलाश के तहत सुनते हैं धर्मुनायक एवं साथियों को।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम पलाश। यह है हमारा लोकगीतों का कार्यक्रम। पलाश के तहत आपने सुना धर्मू नायक एवं साथियों से कुछ खास नागपुरी गीत। आइए दोस्तों, लोकगीतों के बाद अब जुड़ते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम से, जिसका नाम है स्वर सरिता। स्वर सरिता के आज के हमारे कलाकार हैं बेगम अख्तर।
1: सुनने वालों को बेगम अख्तर का सलाम। आज तक मैं आपके सामने सिर्फ एक गायिका के रूप में ही हाजिर हुई हूँ। आपसे बातें करने का मौका तो मुझे पहली बार ही मिला है, इसलिए ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि मैं बेहद खुशनसीब हूँ जो ऐसे मुल्क में मैंने जन्म लिया जहाँ की फजाएं संगीत से मुअत्तर हैं, जहाँ के लोग फन और फनकार से मोहब्बत करते हैं। मुझे भी एक फनकार की हैसियत से आपका बहुत प्यार मिला है। आपके प्यार का शुक्रिया हमेशा मैंने अपनी गायकी से अदा किया है।

लोग कहते हैं आज के मॉडर्न जमाने में क्लासिकल म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, इसमें आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं, मगर ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि गजल और उसकी गायकी भी क्लासिकल मौसीकी का ही एक अंग है। इसे आज भी वही मकबूलियत हासिल है जो पहले थी। गजल अगर सही ढंग से पेश की जाए तो इसका जादू सर चढ़कर बोलता है।

बदलते हुए जमाने ने जहाँ हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहाँ मूसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहाँ तक आज के फनकार और मूसीकार नएपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

दोस्तों, बेगम अख्तर के स्वर में हम सुन रहे थे स्वर सरिता कार्यक्रम। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली और रांची केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
5: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
8: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
9: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
10: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की पटेल सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
11: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
12: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख की है। खूंखार कुत्तों को सजाए मौत, शीर्ष न्यायालय ने कहा बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को

0: भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
2: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट

0: Corridor and review Joint Strategic Action Plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं और समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नई यात्री सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहेंगे मौजूद। रांची में सीआईआई की राउंड टेबल बैठक संपन्न। उद्योग सचिव ने कहा झारखंड में 1.5 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रांची के निजी स्कूलों में लॉटरी पूरी। 641 बच्चों का मुफ्त नामांकन के लिए चयन। बोकारो, धनबाद और देवघर समेत राज्य के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और वज्रपात की चेतावनी। और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। सीनियर और जूनियर वर्ग में जीते विजेता और उपविजेता के खिताब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू आज सवेरे 10 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट पर नवनिर्मित बिरसा मुंडा की प्रतिमा सहित फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और फ्लाई ब्रेरी का उद्घाटन और अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यपालक निदेशक एसएस राजू ने कल शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रांची में आयोजित सीआईआई की राउंड टेबल बैठक में उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि झारखंड देश के 44% खनिज संसाधनों के साथ सबसे उपयुक्त निवेश स्थल है। रांची में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं हैं और रांची में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य में मैट्रिक और इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की चिंता बढ़ गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी गुरुजी क्रेडिट योजना बैंकों की उदासीनता के कारण धीमी चल रही है। 15 लाख रुपए तक के इस लोन में हो रही देरी पर अब पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य सरकार पर सोची समझी साजिश के तहत बैंकों से लोन रुकवाने का आरोप लगाया है।
3: बच्चों को लोन देने की बात है, वहाँ पर बैंक तरह तरह के जो है हथकंडे अपना किसी तरह से बच्चों के लोन को रोक रहा है, पर इस पूरी प्रक्रिया में हमारी जानकारी है वो यह है, इसमें बैंक जिम्मेवार नहीं है, बल्कि बैंक को इंस्ट्रक्शन साफ साफ ऊपर से फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है कि जानबूझ करके कम से कम बच्चों का लोन जो है अप्रूव किया जाए और उसको टेक्निकल कारण बता के रिजेक्ट किया जाए।
2: वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार के राजनीतिक दखल और साजिश के कारण बैंक इस योजना में उदासीन रवैया अपना रहे हैं।
4: देखिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना या सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों

0: एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने कल रांची और हटिया रेलवे स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पुनर्विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के यौन शोषण के मामले की जांच तेज हो गई है। झालसा की टीम ने प्रारंभिक जांच में आरोपों को सही पाया है। इधर रांची उपायुक्त ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक सैंडल, HIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल HIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। रांची के एसडीएम कुमार रजत ने बताया कि उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर हुई इस पारदर्शी प्रक्रिया में 89 निजी विद्यालयों की आरक्षित सीटों के लिए बच्चों का चयन किया गया है।
1: 1499 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 1036 एप्लीकेशन जो है वो करेक्ट पाए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो 25% जो भी सीट्स हैं उसको हम लोग फुलफिल करेंगे और उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।
2: किस स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन हो जाएगा?
3: एक पेरेंट्स जो है वो 3 स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है, उसमें एक इनकम का क्राइटेरिया है, एक उसमें डिस्टेंस का क्राइटेरिया है, इसके अलावा बाकी अपना जो आधार कार्ड और ये नॉर्मल है।
0: रांची नगर निगम ने नगर आयुक्त के नाम पर आ रहे फर्जी व्हाट्सएप संदेशों को लेकर अलर्ट जारी किया है। निगम ने बताया कि +84 से शुरू होने वाला नंबर पूरी तरह फर्जी है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसे संदिग्ध नंबरों पर अपनी बैंकिंग या निजी जानकारी बिल्कुल साझा न करें। रांची के नामकुम पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने गुप्त सूचना के आधार पर सिद्रौल जोड़ा मंदिर के पास घेराबंदी कर यह कार्रवाई की।
4: नामकुम थाना क्षेत्र का सिद्रौल जोड़ा मंदिर है, उसके पास में एक एंटीग्राम चेकिंग लगाई गई थी और उसी समय एक व्यक्ति जिसके पास में एक ब्लू रंग का अपाचे बाइक था उसको हम लोगों ने पूछताछ की। उसने बताया कि जो बाइक है उसके पास में वह चोरी की बाइक है, नंबर प्लेट जो है वो भी चोरी का ही है। बाइक को वो बेड़ों का एक वसीम औद्दार है उसके पास लेके जा रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज बोकारो, धनबाद और देवघर समेत 9 जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची, हजारीबाग और सिंहभूम सहित अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाओं के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन और वर्षा हो सकती है। झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर शानदार सफलता हासिल की है। ताशकंद रग्बी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर लौटे डेविड मुंडा का रांची में भव्य स्वागत हुआ। वहीं रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सीनियर पुरुष स्ट्रोक और महिला फेयरवे वर्ग में झारखंड की टीम विजेता बनी। वहीं जूनियर बालक स्ट्रोक, जूनियर बालिका फेयरवे और जूनियर बालक फेयरवे प्रतियोगिताओं में टीम ने उपविजेता का खिताब अपने नाम किया। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। टेस्ट टीम की कप्तानी शुभमन गिल और उप कप्तानी KL राहुल करेंगे, जबकि वनडे में श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। इस सीरीज के लिए झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की 3 साल बाद वनडे टीम में शानदार वापसी हुई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से CII प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, महिला पार्षद का आरोप, बैठक में मेरी आपत्तिजनक वीडियो बना

बनाई, सोशल मीडिया पर डाला। हिंदुस्तान ने पश्चिमी सिंहभूम के पोराहाट जंगल में हुई मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। प्रभात खबर के शब्द हैं, वित्त मंत्री का बड़ा सवाल, घोटालेबाज डीडीओ सीआईडी जांच टीम से दूर है ना, सुनिश्चित करें। दैनिक जागरण ने लिखा है, सबसे गर्म रहा पलामू, कई जिलों में पारा 40 के पार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नई यात्री सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहेंगे मौजूद। रांची में सीआईआई की राउंड टेबल बैठक संपन्न। उद्योग सचिव ने कहा, झारखंड में 1.5 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रांची के निजी स्कूलों में लॉटरी पूरी, 641 बच्चों का मुफ्त नामांकन के लिए चयन। बोकारो, धनबाद और देवघर समेत राज्य के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और वज्रपात की चेतावनी। और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, सीनियर और जूनियर वर्ग में जीते विजेता और उपविजेता के खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपका रेडियो साथी सैक चैटर्जी, जो आज आपके लिए लाया हूं सुरों का एक सुंदर सा गुलदस्ता। आज सबसे पहले जिस गीत को आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों, उसे हमने लिया है 1981 की उस सुपरहिट फिल्म से जिसका नाम था आस पास। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अभिनीत इस फिल्म के गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने, जबकि म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की केमिस्ट्री हिंदी फिल्म हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक माना जाता है। इनकी इस बेमिसाल जोड़ी ने इंडस्ट्री को एक से एक सफल फिल्में दी हैं। उसी में से एक है 1976 में आई फिल्म चरस। फिल्म चरस के लिए गीत लिखे थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। पर दोस्तों, मैं बताता चलूं कि लता और रफी के अलावा इस गीत में कुछ खास ऐसी पंक्तियां थी, लाइनें थी, जिसे आनंद बख्शी साहब ने भी अपनी आवाज दी थी। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

धर्मेंद्र जी की जोड़ी आशा पारीख के साथ भी काफी हिट साबित हुई थी। इस जोड़ी की एक सफल फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश, 1971 में यह फिल्म आई थी। इसके भी गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज थी लता।

इसी फिल्म यानी फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक डांसिंग सीक्वेंस पर लता जी के गाए गीत को अभिनेत्री लक्ष्मी छाया, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया था। तो आइए सुनते हैं उस गीत को।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन, ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जुड़ते हैं कार्यक्रम जोहार पलामू से।
1: जोहार पलामू।

0: दोस्तों जोहार, पलामू कार्यक्रम का प्रस्तुति स्वर है मेरा, यानी कि आप सबका अपना रेडियो साथी साइका चटर्जी का, जबकि इसके संयोजन करता है संजीव कुमार लाल। दोस्तों ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 20 मई वर्ष का 140वां दिन है और साल में अभी भी 225 दिन शेष रह गए हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं 20 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं को। तो आपको बताते चले कि 20 मई 1995 को रूस द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष स्प्रेक्ट का सफल प्रक्षेपण किया गया था और 20 मई 1999 को कुद्र विद्रोही नेता सेमडिम साकी को मृत्यु दंड की सजा मिली थी। इसी तरह दोस्तों 20 मई सन 2000 को फिजी में बंदूकधारियों के नेता जॉर्ज स्पेट ने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2001 की 10 मई को अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदुओं की अलग पहचान के लिए ड्रेस कोड बनाया था। 20 मई 2003 को पाकिस्तान ने उग्रवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगाया था। 2004 के 20 मई को ताइवान में नवगठित सरकार ने शपथ ग्रहण की। यूरोपीय संघ के बाद अमेरिका ने भी कृषि निर्यात सब्सिडी कम करने की घोषणा इसी दिन यानी कि 20 मई 2004 को की थी, जबकि 20 मई 2006 को चीन ने कहा ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता का पात्र नहीं है। 2011 के 20 मई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मध्य प्रदेश के बीना में हजारों करोड़ की लागत से बनी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की। यह भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, ओमान ऑयल कंपनी तथा मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से बनी विश्व स्तरीय परियोजना है। 2011 के माने इसी दिन 20 मई को 2011 के झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा था। आइए दोस्तों अब कुछ जानकारी की बातें हो जाए तो उसके तहत आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह से हमारी बातचीत के कुछ अंश आपको सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रोचक होने के साथ साथ काफी जानकारियां भी मिलेंगी आपको, तो आइए सुनते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: सर सबसे पहले मैं जो आज बात करूंगा शुरू करूंगा गलतफहमियों से। सर ऐसा अक्सर देखा गया है इन दिनों, खास करके हमारे पलामू रीजन की बात करूं तो, कि एक और दो के जो सिक्के हैं सर उसका प्रचलन बहुत कम हो गया है इन दिनों। जो लोग हैं वो लेना नहीं चाहते, कहते हैं कि बंद हो गया, या कुछ लोग सीधे तौर पे नकार देते हैं। सर यहाँ तक मैं निजी पर्सनल बात करूं सर तो झगड़ा तक हो गया, मैं अड़ गया कि भाई कैसे नहीं लोगे, अब भारत के नागरिक हो आपको लेना पड़ेगा, तो ऐसी बातें हुई सर। तो ऐसा अक्सर होते रहता है, तो यही जानकारी सबसे पहले मैं साझा करना चाहूंगा श्रोताओं को। आप बताएं कि एक और दो के सिक्के नहीं लेना या नहीं चलाना, या ये कैसे रुक सकता है सर इसके बारे में।
1: नहीं, अपनी ने अपने सवाल में ही इसका उत्तर दिया है, तो ये गलतफहमी ही जी। और गलतफहमी कई बार जिसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कुछ किसी ने कुछ कह दिया फिर बाकी लोगों ने बिना उसको सत्यापित किए हुए उसको मान लिया। क्योंकि सिक्के, देखिए सिक्के जो हैं वो भारत सरकार की ओर से जारी होते हैं, रिजर्व बैंक उनका वितरण बैंकों के जरिए करता है। अब सिक्कों का जो जीवन होता है वो लंबा होता है, वो 40 वर्ष भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा होता है कि काल क्रम में अलग अलग समय पे भारत सरकार ने जो सिक्के जारी किए वो थोड़ी उनकी डिज़ाइन अलग हो सकती है ना, अलग मूल्य वर्ग हो सकता है। तो कई बार उसमें किसी कारण से जनता में गलत फहमी फैल जाती है। हम लोग जो आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में अनूठा केंद्रीय बैंक है कि वो बुनियादी काम जो हैं जैसे महंगाई को नियंत्रित करना, मुद्रा प्रबंधन और बाकी जो काम है बैंकर्स टू बैंक्स और सरकार के लिए बैंकिंग और जो वित्तीय सुदृढ़ता देश की सुनिश्चित करनी है, इन बुनियादी कामों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में अनूठा है कि विकासात्मक कार्य बहुत करता है। तो इसके दो तीन पहलू हैं विकासात्मक कार्य के। एक तो लोगों को जो सुविधाएं हैं, वित्तीय सुविधाएं हैं, उसके बारे में हम लोग बताते हैं जिसको कहते हैं कि वित्तीय समावेशन के जरिए हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि बैंकिंग सुविधाएं सबके लिए उपलब्ध रहें। फिर जो सुविधाएं हैं, जो उत्पाद हैं, उनके बारे में लोगों के पास जागरूकता नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, तो उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में जाएं और जो बुनियादी जो वित्तीय उत्पाद हैं, सुविधाएं हैं, उसके बारे में बताएं और लोगों के जो अधिकार हैं उसके बारे में बताएं कि वो जो निर्णय करते हैं वो अपने हित में कर सकें, वित्तीय निर्णय, और साथ ही साथ कुछ जो जरूरी सावधानियां होती हैं तो वो भी बताते हैं, ताकि जो उनके गाढ़ी जो कमाई है वो उनके पास सुरक्षित रहे। उनको ये भी बताते हैं कि अगर बैंकों में आप अपनी राशि रखेंगे, बचत रखेंगे, तो उसके क्या फायदे हैं। वो बचत फिर ब्याज के जरिए बढ़ती भी है और 5 लाख तक की राशि अभी हर खाते में सुरक्षित है DICGC के जरिए, जो हमारी संस्था है। तो इसी क्रम में हम लोग यह भी बताते हैं सिक्कों के बारे में, और हमारा जो वेबसाइट है उस पर भी हम लोग जानकारियां डालते हैं। तो जैसे इसके बारे में 26 जून 2019 का प्रेस रिलीज भी है, जिसमें हम लोगों ने ये सारे जो लोगों के भ्रम हैं, गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की। साथ ही साथ आप रेडियो पर भी सुनते होंगे या हम लोग मोबाइल वैन्स के जरिए भी ये जानकारियां प्रसारित करते हैं, जो आपने सुना होगा सिक्का सिक्का
0: जी,
1: चलेगा
0: बिल्कुल
1: पक्का।
0: हमारे आकाशवाणी केंद्र से भी सर बजते हैं।
1: और हम लोगों ने इसके अतिरिक्त अपने रांची कार्यालय की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने 90वें वर्ष में रिजर्व बैंक के 90 शिक्षण संस्थानों में इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम किए। फिर हम लोगों ने एक 90 स्लोगन की पुस्तिका निकाली है, यात्रा अविराम, तो उसमें इसके बारे में भी है। जैसे एक स्लोगन उसमें है, सिक्के सहर्ष स्वीकार करें और बिना हिचक व्यवहार करें, तो उसका उद्देश्य यही है। और ये अलग अलग प्रांतों में आप देखेंगे कि ये गलतफहमियां अलग अलग ढंग की हैं। जैसे आपने एक या दो इधर बताया तो जाके पता चलता है। जैसे मैं एक बार दक्षिण में गया था तो उधर जो हमारे जो सारथी थे, ड्राइवर जो थे, तो उन्होंने कहा कि सर ये सिक्के मेरे पास हैं, यहां नहीं चल रहे हैं आप, तो उसके बदले हमको नोट दे दीजिए। तो इस तरह की गलतफहमियां फैल जाती हैं, जो कि अकारण है, क्योंकि सिक्के तो इस मामले में सुरक्षित है कि उनकी फोर्जरी भी आसान नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कुल मिलाकर हम अपने श्रोताओं को ये कह सकते हैं, एक या दो के सिक्के जो आप नहीं ले रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो बेझिझक उसका लेन देन करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत वर्ष में कहीं भी एक दो के सिक्के चल सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक दो क्या, 50 पैसे से लेके
0: जी
1: और 20 रुपए तक के सिक्के हैं
0: जी,
1: और सारे के सारे सिक्के चलन में हैं। और उसको जैसे हमने कहा, सिक्के सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार करिए, सिक्के सहर्ष स्वीकार करें और बिना झिझक बिना हिचक व्यवहार करें।
0: सर सिक्कों की बात हो रही थी तो सिक्के सचमुच बहुत ही इसका पुराना इतिहास है, हम मुगल सल्तनत के समय से देखें या उससे भी पहले से।

0: देखे तो सिक्कों का ही प्रचलन रहा है। बहुत से लोग हमारे शहर में भी ऐसे हैं जो एंटिक सिक्कों की संग्रह रखते हैं। तो सर एक बात और जानना चाहूंगा, बीच बीच में भारत की ओर से, सरकार की ओर से, रिजर्व बैंक की ओर से सिक्कों को जारी किया जाता है, 50 रुपए के सिक्के, 100 रुपए के सिक्के, जो कुछ खास मोमेंट पे होता है, खास अवसर पर होता है, तो वो बाजार स्मारक सिक्के तो बाजार में नहीं आते, तो क्या वो बाजार में उपलब्ध नहीं होता, उस खास मौके के लिए ही होता है?
1: खास मौके के लिए होते हैं, लेकिन वेबसाइट के जरिए मंगा सकते हैं आप। जैसे ही कमेमोरेटिव क्वाइन करके स्मारक सिक्का सर्च करेंगे तो अलग अलग मिंट्स जो हैं, जो 4 मिंट है हमारी, वो निकालते हैं, तो ऑनलाइन उसको मंगाया जा सकता है। उसकी राशि होती है, मतलब उसकी कीमत,
0: मतलब
1: होती
0: वो स्मारक के रूप में ही इस्तेमाल होता है,
1: स्मारक के रूप में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब वो ऐसे उसका मूल्य तो उतना होगा ही धातु का, लेकिन वो किसी अवसर विशेष पे जारी किए गए हैं, वह उनकी विशेषता होती है।
0: तो अभी 50 पैसे से लेकर 20 रुपए तक के सिक्के बाजार में प्रचलित है।
1: जी जी
0: सर, 2000 के नोटों को लेकर भी अभी कुछ अफवाहें ऐसी ही बाजार में हैं, इसके बारे में सर कुछ प्रकाश डालें।
1: नहीं, 2000 का अगर आपको याद होगा तो एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए 19 मई 2023 को एक घोषणा हुई कि 2000 के नोट चलन से वापस लिए जा रहे हैं। तो चलन से वापस लिए जाए मतलब वैध मुद्रा है, लेकिन उसको सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है। तो लोगों को अवसर दिया गया किसी भी बैंक शाखा में जाके उसको बदलना संभव रहा, और ये सुविधा 30 सितंबर तक दी गई थी, जो एक सप्ताह आगे बढ़ाई गई और 7 अक्टूबर तक 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में ये सुविधा रही। उसके बाद भी अभी भी ये 2000 के नोट वैध मुद्रा हैं, और अभी ये सुविधा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो 19 इशू ऑफिसेज हैं, जहां नोटों का लेन मतलब नोटों के बारे में जहां कार्य होते हैं, निर्गम केंद्र बोलते हैं उनको, तो वहां पे वो उसको बदला जा सकता है अभी भी। जैसे कलकत्ता और पटना, ये दोनों इशू ऑफिस हैं रिजर्व बैंक के वहां पे। तो इसके अलावा डाक से भी बदलने की सुविधा दी गई कि डाक से आप वो नोट भेज सकते हैं अपने अकाउंट डिटेल्स के साथ, खाते के विवरण के साथ, जिसके बाद वो उसके मूल्य के बराबर राशि आपके खाते में वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये सुविधा अभी भी है।
0: उसके लिए कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता
1: है? एक पृष्ठ का एक सरल फॉर्म है, और आपके उसमें अकाउंट की जानकारी वगैरह होती है, और डाक विभाग के साथ वो अरेंजमेंट है, तो उसके जरिए आप भेज सकते हैं। तो उसमें क्या है कि फिर आपको खुद वहां जाने की जो जरूरत है वो नहीं रह जाती है। तो कई बार हमारे यहाँ भी जो लोग पहुँचते हैं उनको बड़े सरलता से ये सब चीज़ें समझा दी जाती हैं। वो हमारे वेबसाइट पे फॉर्म भी अवेलेबल है, और किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ भी उपलब्ध है। और अभी की स्थिति यह है कि लगभग 98% से भी ज़्यादा वो 2000 के जो नोट हैं वो
0: वापस
1: आ चुके हैं। तो जो मतलब 98.21% कुछ दिनों पहले की ये स्थिति है, तो लगभग मतलब अब 1.5-2% बचे हुए हैं, तो उनको भी लोग इस तरह से
0: जी बिल्कुल लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और आकाशवाणी के माध्यम से ग्रामीण श्रोता जो सुन रहे हैं उन्हें मैं अपनी बात भी साझा कर दूं सर लगे हाथ। अभी कुछ दिन पहले, मतलब 10 दिन भी नहीं हुए, मेरी माँ मुझे 1-2 हजार की नोट दी, कहेगी देखो ये मेरे पास रह गया था। तो मैं तो पहले माँ से थोड़ा सा मजाक किया, डराया माँ को कि अब ये नोट चलने वाली नहीं है, लेकिन माँ अखबार पढ़ती है रोज आज भी, तो वो बताई कि नहीं नहीं मैं पढ़ाऊं कहीं अभी बदला जा सकता है, तो मैं देखा कि नहीं इन्हें ठगा नहीं जा सकता तो मैं वो नोट लेके गया पोस्ट ऑफिस, और बड़े ही सरल ढंग से, जैसा कि आपने बताया, एक पन्ने का एक फॉर्म था, उसे भरा और जमा कर दिया मैंने, और कुछ ही दिनों के बाद पैसे बैंक खाते में वापिस आ गए, मेरी माँ भी खुश हो गई। तो मैं कहना चाहूंगा श्रोताओं से, आप भी खुश हो सकते हैं, अगर आपके पास अभी भी 2000 के नोट है तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल आप अपने पोस्ट ऑफिस पे आएं, हमारे डाल्टनगंज मेदिनीनगर का जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहां पर आप आएं और संपर्क करें अधिकारियों से, आपको एक एक पन्ने का फॉर्म दिया जाएगा, आप उसे भरकर वहीं पर जमा कर दें नोट के साथ आपके खाते में, और वो वापिस आ जाएंगे। तो सर ये तो रही 2000 की नोटों की बात, गलतफहमियों की बात। एक और बात मेरे जहन में है सर, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, कटे फटे नोट ये एक परेशानी का सबब है, और दलाल जैसे लोग सक्रिय हो जाते हैं इसमें, खास करके शादी ब्याह का समय अभी है सर, तो वो लोग कटे फटे नोट बदलने के लिए बहुत हेवी अमाउंट ले लेते हैं कि हमें देना पड़ता है बैंकों को ऐसा करके। जबकि जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बैंकों के माध्यम से आप कटे फटे नोट आसानी से बदल सकते हैं। तो इस पर जरा प्रकाश डालें सर।
1: नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में कटे फटे नोट कोई भी लेके जा सकता है, चाहे वो उसका ग्राहक नियमित ग्राहक हो या नहीं हो।
0: मतलब खाताधारक होना भी जरूरी नहीं है।
1: तो ये जानकारी का अभाव है, कई बार ये जानकारी का अभाव दोनों तरफ होता है। तो और इसके साथ साथ ये निर्देश है कि हर बैंक शाखा को ये प्रदर्शित करना है अपने बैंकिंग हॉल में कि यहाँ कटे फटे नोट बदले जा सकते हैं और स्वीकार किए जाते हैं।
0: अच्छा, ये बैंक को लिखना है
1: निर्देश? हाँ, वो डिस्प्ले करना है, उनके प्रदर्शित करना है। तो ये भी जानकारी कई बार लोगों को नहीं होती है, तो उसके अभाव में वो फिर वो बाकी जो किसी के चक्कर में अगर पड़ जाते हैं, तो अगर बैंक शाखा में आप जाएंगे और वो चाहे मैले नोट भी हो, सॉइल नोट जिसको कहते हैं
0: जी,
1: वो भी अगर कटे फटे होंगे तो नोट रिफंड रूल है रिजर्व बैंक का, तो उसके आधार पे उनको पूरी राशि या फिर आधी राशि, बीच वाली कोई स्थिति नहीं होती है
0: जी,
1: वो
0: माने नोट के हिसाब से कितने कटे फटे हैं, वो
1: कितना हिस्सा उपलब्ध है।
0: अच्छा, वो भी एक है कि हिस्सा, मतलब एक नोट मान लीजिए 10 रुपए का एक नोट है, वो आधा मेरे पास है तो वो भी लेकर हम जा सकते हैं?
1: अगर आधा है उसका, उनके पास बैंक में एक मेजरमेंट का ये होता है, पैड होता है, तो उसमें वो नापते हैं, तो नोट रिफंड रूल के हिसाब से अगर वो 50% या उससे ज्यादा हुआ, और डिनोमिनेशन पे भी निर्भर करता है, छोटे डिनोमिनेशन में वो या तो मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन बड़े डिनोमिनेशन जो है 50 से उससे ज्यादा वाले, तो उसमें आपको रिफंड रूल के हिसाब से वो मिल जाएगा। यहां तक कि कई जगह कई बार होता है कि किसी कारण से नोट जल गए, तो उनके लिए भी प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो हो गया तो उसके लिए
0: मतलब हताश होने की जरूरत नहीं है,
1: मतलब विशेष प्रावधान है उसमें, फिर वो देखा जाता है उसी नोट वापसी के जो नियम है उसके अंतर्गत कि क्या देय है, उसके हिसाब से वो पेमेंट होता है। और अभी जो सबसे ताज़ा जो प्रगति है इस दिशा में, जिस जो अभी पायलट स्टेज में है, आपने सुना होगा CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो वो अभी परीक्षण स्तर पे है, जिसमें सीमित लोगों के बीच में परीक्षण हो रहा है, तो उसका रिटेल जो है, जो आम लोगों के लिए, तो उसमें कुछ बैंकों के साथ और कुछ ग्राहकों के साथ वो पायलट जिसको कहते हैं स्तर पे अभी है, तो उसमें ये सब सुविधा है कि उसमें ये जो नोट खो जाने, कट जाने, जलने, इसकी इसका संकट नहीं रहेगा, क्योंकि वो वही नोट आपके CBDC वैलेट में रहेंगे। तो ये भी एक इस तरह के नए नए जिसको नवोन्मेष करते हैं
0: जी सर, तकनीक का इस्तेमाल करके सहूलियत दी जा रही है,
1: करते हैं कि ताकि लोगों को, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हर संभव सुविधा उनको मिल सके
0: जी।
1: और इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक जो सुविधाएं उपलब्ध कराता है, चाहे वो ऑम्बुड्समैन के स्तर पर शिकायत की सुविधा हो, कुछ भी, वो निःशुल्क उपलब्ध कराता है।
0: सर, ऑनलाइन की बात हो रही थी, तकनीक की बात हो रही थी, तो हम सीधे ऑनलाइन ही बात करते हैं सर अभी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ये तो सर बहुत हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक तो आजकल टेलीफोन में मोबाइल पे अगर रिंग आता है तो रिंग में भी सावधान किया जाता है, मैसेज आ रहे हैं RBI की तरफ से, आपके तरफ से हमेशा जारी किए जा रहे हैं, फिर भी सर फ्रॉड हो जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए दुर्भाग्यजनक तरीके से हमारे किसी साथी का जो फ्रॉड हो गया, ऐसा उनके साथ दुर्घटना घट गई, तब वो क्या करें? ऑनलाइन फ्रॉड अगर हो जाए, उनके बैंक खाते से पैसे की निकासी किसी ने कर लिया गलत तरीके से, तब वो क्या करें सर इमीडिएट, ये जानकारी सर थोड़ा दीजिए
1: जी। तो उसमें देखिए दोनों पक्ष हैं, और अभी हमने चर्चा भी की कि भारतीय रिजर्व बैंक जो अपने डेवलपमेंटल जो उनका काम है, विकासात्मक कार्य, उसके अंदर जो सबसे जरूरी होता है कि घटना ना हो, इसके लिए जो जागरूकता लोगों के बीच में, उसको बढ़ाना। तो जैसा हमने कहा कि कई स्तरों पर जागरूकता, आप जागरूकता संदेश देखते होंगे, सुनते होंगे टेलीविजन, रेडियो और बाकी सब माध्यमों से, छोटे छोटे सुंदर वीडियो संदेश भी आते हैं जिसमें तरह तरह की जो धोखाधड़ी की घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताया जाता है है ना, चाहे वो केवाईसी अपडेट करने से लेके बाकी जो प्रलोभन देके होते हैं उस तरह से। और हम लोग अपने स्तर पे ये करते हैं कि जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो पहले तो एक हो जिसको प्रिवेंटिव जिसको कहते हैं मेजर्स की वो हो ही नहीं, तो हो ही नहीं उसके लिए जैसे हमने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय की तरफ से हमने सोचा कि बच्चों को अगर युवा अवस्था में बिल्कुल यंग एज में बता दिया जब वो छोटे हैं तो वो जब जान जाएंगे, और इसके लिए बहुत कुछ बुनियादी सावधानियां होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए मशक्कत की जरूरत नहीं होती है, बेसिक बुनियादी चीज़ें होती हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे 90वें वर्ष में हम लोग 90 शिक्षण संस्थानों में गए और हमने बच्चों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्विज करा के, और एक हम लोगों ने सारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देश भर में क्विज भारतीय रिजर्व बैंक ने कराया था जिसमें 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। तो उद्देश्य है कि जो अलग अलग लक्षित वर्ग हैं बच्चे हो गए, फिर हम लोगों ने जो वित्तीय जागरूकता सप्ताह किया तो महिलाओं पर केंद्रित किया, चाहे वो गृहिणियां हों, कामकाजी महिलाएं हों या उद्यमी महिलाएं हों, SHGs की महिलाएं हों, तो उनको अलग अलग लक्षित समूह को ये बताना और इस तरह से बताना कि उनके जहन में रहे। जैसे हम लोगों ने बच्चों के लिए एक ज्ञान बाण कार्यक्रम किया, अवेयरनेस थ्रू आर्चरी, तीरंदाजी के जरिए जागरूक था, तो उसमें बच्चों को तीरंदाजों से हमने तीरंदाजी का अभ्यास कराया, खेल खेल में सिखाने के लिए किया कि जो लक्ष्य थे टारगेट्स उनके नाम हमने रखे लालच, भय, अज्ञान, अविवेक और जल्दबाजी। तो कुल मिला के जितनी भी धोखाधड़ी की घटनाएं होती हैं इन्हीं कारणों से होती हैं, या तो प्रलोभन दिया जाता है आपकी राशि दुगनी हो जाएगी, आप यहाँ पैसे लगाएं, कई बार कुछ समय तक वो ऐसा करके दिखा भी देते हैं और बाद में जब बहुत लोगों की राशि इकट्ठी हो जाती है तो चले जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि जो अधिकृत जो वित्तीय संस्थान है जो रेगुलेटेड है किसी भी RBI से हो, SEBI से हो, IRDA से हो, वहीं अपने पैसे रखें। जैसे बैंक में पैसे रखेंगे तो 5 लाख तक प्रत्येक खाते में सुरक्षित है, तो पहला तो ये हुआ। तो ये हो गया कि प्रलोभन से बचें, किसी भी तरह के प्रलोभन से। सभी बैंक जो है अपने जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज जो देते हैं अपने जमा राशि पे, वो प्रदर्शित करते हैं, वो अखबारों में भी आते हैं, उनके वेबसाइट पे भी रहते हैं, लोगों को मालूम भी रहता है। जैसे ही उससे ज्यादा अगर कोई प्रस्ताव दे रहा हो तो आप देखते होंगे अलग अलग, कभी वो सदी के महानायक की तरफ से होता है संदेश, कभी खिलाड़ी जो हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं वो संदेश देते हैं कि आप, किसी ने कहते हैं ना, किसी ने 2 ओवर में 3 ओवर सेंचुरी बनाई है क्या, मतलब कि रातों रात या बहुत जल्दी पैसे बढ़ाने, तो प्रलोभन से बचें। दूसरा है कि भय देकर भी बहुत लोग धोखाधड़ी करते हैं, आपकी बिजली कट जाएगी, आपके गैस कनेक्शन कट जाएगा, और आजकल वो रिटायर्ड लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप, अगर उन्होंने गलती से उठा लिया वीडियो कॉल तो कहते हैं आप वहीं रहिए, वहां से जाइए नहीं, इतने पैसे भेजिए। तो हम लोग बताते हैं कि आप जो बुनियादी सावधानियां हैं, OTP शेयर न करें, अपने जो बैंक की जरूरी जानकारियां हैं वो सार्वजनिक जगह पे या कहीं स्टोर करके न रखें या किसी को बताएं नहीं, अनजान लिंक पे क्लिक न करें, अनजाने कॉल न उठाएं, वीडियो कॉल न उठाएं। और तो लालच हो गया, भय हो गया, कई बार जानकारी का अभाव होने से धोखाधड़ी घटनाएं होती हैं। जैसे कि एक छोटा उदाहरण दूंगा कि किसी के पास अगर ये संदेश आता है कि हम आपको एक QR कोड भेज रहे हैं, आप इसको स्कैन कर रहे हैं, हम आपको 1,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये देंगे, कारण वो कुछ भी बता सकते हैं। तो एक तो उन्होंने प्रलोभन दिया, दूसरा इसमें यह भी बात छिपी हुई है कि अगर थोड़ी जानकारी हो तो ये पता रहेगा कि QR कोड आप जहां चाहते हैं, आपने कुछ खरीदा, कुछ खाया, उसके लिए भुगतान करने के लिए होता है, कभी भी पैसे रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए QR कोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह से ये जितने भी आपने बताया, कई तरह से कई संस्थाएं भी हैं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साथ बाकी संस्थाएं जो बताती हैं कि आप ये सावधानियां बरती हैं, KYC अपडेट करने के लिए कोई कॉल नहीं करेगा आपको मोबाइल पे, इस तरह से जानकारियां दी जाती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ एक रहता है कि कुछ भी आप एक गतिविधि ऐसा करें कि आपका जो गैजेट है, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो, वो उस पर उनका एक्सेस, उनकी पहुंच बन जाए, फिर जो उसकी गोपनीय जानकारियां हैं उसके जरिए वो ट्रांजेक्शन करते हैं। और सबसे जरूरी ये होता है कि कई बार जानकारियां सारी होती हैं जो जिसको एक टारगेट का नाम ने अविवेक रखा कि मतलब सारी जानकारियां हैं लेकिन उस समय आप उसका व्यवहार नहीं कर रहे हैं,
0: विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं
1: और जल्दबाजी कर रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचना

0: से ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी हो तो अगर आधे घंटे एक घंटे आप रुक जाएंगे, किसी जानकार आदमी से उसको सत्यापित कर लेंगे, तो ऐसे ही वो घटना टल जाएगी, क्योंकि वो इस तरह की स्थिति बनाते हैं कि आप जल्दबाजी में उनके हित में कोई कदम उठा लें। तो इससे बचने के लिए जो अवेयरनेस है, फिर भी अगर किसी तरह किसी के आपके साथ नहीं, आपके आसपास घर परिवार में अगर कोई इस तरह की घटना हो गई, तो साइबर फ्रॉड के लिए एक 1930 जो नंबर है 1930, जो आपने कहा भी कि आजकल हर कॉल उठाते समय बताया जाता है कि ये करें और ना करें, और अगर कोई घटना हो जाए तो आप तुरंत 1930 पर उसको रिपोर्ट करें, निःशुल्क ये नंबर है। और फिर जो cybercrime.gov.in पोर्टल है, उस पर जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इससे होता यह है, जिसको कहते हैं गोल्डन आवर रूल, कि जितनी जल्दी आप इसको रिपोर्ट करेंगे, तो जो राशि आपके खाते से निकल ली है वो वहीं फ्रीज हो जाएगी, और उसके लौटने की जो संभावना है उतनी त्वरित और उतने उसकी निश्चितता हो जाएगी। दूसरे ये है कि अगर बैंक खातों के संदर्भ में लिमिटेड लायबिलिटी का एक रूल है कि अगर 3 दिन के अंदर आपने बता दिया अपने संबंधित बैंक को और आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी गलती नहीं है, जैसे ये गलतियां ही होती हैं कि आपने कुछ जानकारी साझा कर दी या कोई लिंक क्लिक कर दिया, ऐसे कोई भी अगर धोखाधड़ी की घटना हो गई, तो इससे आपका बचाव हो जाएगा। और हम लोग अपने जो वेबसाइट है और इसमें, तो लोगों के लिए भी उपलब्ध है, वो rbi.org.in जो है, www.rbi.org.in, तो उसमें जाकर आप देख भी सकते हैं। तो इसमें जो मास्टर दिशा निर्देश है जो 1 अप्रैल का है, तो उसमें भी बहुत सारी जरूरी जानकारियां हैं। दूसरे हमेशा आप कोई भी संस्था है जहां आप वित्तीय संस्था जहां आप पैसे रखना चाह रहे हैं, तो हमेशा वो आप जांच भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके कि ये अधिकृत संस्था है या नहीं, क्योंकि कई बार कई संस्थाएं अपना छद्म रूप लेके या बैंक नाम का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो थोड़ी सी ये जो ज़रूरी सावधानियां हैं आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकती हैं, अगर किसी कारण से वो घटना घट गई तो, जैसा 1930 या 1930 जो है वो नंबर। और अच्छी की बात है कि जब हम लोग, जैसे कल भी हमने यहाँ कार्यक्रम किया, आज भी किया, बच्चों से भी पूछते हैं तो अधिकांश लोगों का भी ये नंबर याद हो गया है। तो यही कोशिशें हो रही हैं कुल मिला के कि इस तरह की घटनाएं पहले हो नहीं, सावधानियां से अगर हो जाए तो लोग जल्दी से जल्दी ये शिकायतें दर्ज करें।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। आइए अब आगे जुड़ते हैं कार्यक्रम उमंग से, जो कि हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है, और हम सुनेंगे उमंग की कड़ी संख्या 1288।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
2: जी,
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
2: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम दी क्रो।
2: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
1: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program

0: program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम दिक्रो और अब सुनते हैं कार्यक्रम एक पौधा राजू का।
1: इस कार्यक्रम में एक बच्चे के बारे में मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि कैसे उसने एक पौधा लगाया, उसकी देखभाल की और अपने मित्रों को भी उसने पौधा लगाने के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी।

0: एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
0: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम?
1: हाँ दीदी।
0: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों? आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा, तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं।

0: क्यों वाली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
1: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: लो मालिक काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी
0: चलिए दादाजी।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

दोस्तों आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आपने सुना उमंग का भाग 1288। आइए इसी के साथ जुड़ते हैं दिल्ली, मुंबई और रांची केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार और विविध भारती से प्रस्तुत विभिन्न कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक

दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपका रेडियो साथी सैकत। आज के प्रातकालीन सभा में हम आपके साथ थे। आपने हमारे आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को सुना, आपने सुना दिल्ली और रांची केंद्र से प्रसारित समाचारों को भी। आज सुबह से लेकर अब तक आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम खेती की बातें, आपने सुना रामचरितमानस गान, चिंतन, आराधना। आराधना के तहत आज आपने हरिहरण कविता कृष्णमूर्ति व रोबिन चटर्जी की आवाज़ में भक्ति संगीत को सुना। आपने सुना तनाव प्रबंधन के तहत स्वास्थ्य चर्चा, स्वास्थ्य चर्चा में डॉक्टर दीपक सिंह को आपने सुना। इसके बाद दोस्तों दिल्ली केंद्र से जुड़कर संस्कृत हिंदी व अंग्रेजी समाचार सुना। 8:45 पे हम आपसे जुड़े और जुड़कर सुने गीत गुंजन कार्यक्रम। गीत गुंजन के बाद सुबह 9 बजे आपने सुना जोहार पलामू कार्यक्रम और 9:30 पर हमारे केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना आपने। दोस्तों अब वक्त हो चला है कि हम अपने दिल्ली और मुंबई और रांची केंद्र से जुड़े, जहां से आप बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती से प्रस्तुत कार्यक्रम सेलुलॉयड के सितारे, रंग तरंग, यादों की महफिल, सुरीला सफ़र, दोपहर सभा, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, आज के मेहमान और छाया गीत जैसे कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। आइए दोस्तों अब सीधे जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहे।

0: जहां तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो एक भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
0: इतना पेशेंस रखते थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
1: इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है।
1: जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं और रिहर्सल होता था, बकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ। भई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो
1: जी
0: बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: सुना। इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो
1: नहीं,
0: बताइए।
1: क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गए थे, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख मुझे मंडे जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहती है तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगे नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार?
0: बिल्कुल
1: और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो बोलो मत तुम। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देखे, बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल, कॉलेज स्टूडेंट, सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है। बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है,
0: और आपकी ये दोस्ती उतनी
1: अभी भी
0: पुरानी।
1: कायम है।
0: अच्छा,
1: जी हाँ
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
1: बिल्कुल
0: फील्ड के
1: बिल्कुल,
0: लोग हैं।
1: वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूं कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है,
1: जी
0: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो
1: जी
0: हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए।
1: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
0: अच्छा।
1: जी हाँ, फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकल

0: कलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था, मारू नाम पाड़ियों छे संतूर रंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है
0: जी,
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत, देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो कानों में
0: बहुत शुक्रिया,
1: हमेशा घूलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है, एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करते थे?
0: शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी के क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गजलों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था, वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, वो मूड भी बना लो, वो आवाज भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूंगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे, और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे, हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस किस्म की चीज हुआ करती थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?

0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारस मणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते हैं ना टॉप पे रहा काफी दिनों
1: जी
0: तक। और यही नहीं, जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये
0: जी
1: गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो
0: जी
1: आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद
0: करते
1: में
0: थे,
1: रेडियो पे सुनते थे।
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफी गवाया और हम

0: हमारा नाम कहते हैं ना, रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
1: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
0: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था, और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
1: पछतावा तो नहीं होता?
0: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
1: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे आप?
0: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
1: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
0: जी,
1: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
0: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती। जरूर, मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं, और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
1: तो कैसा काम चल रहा है ये?
0: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
1: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है?
0: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना, वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारो, जिन्होंने डॉन बनाई थी। और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी, आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है। और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे। और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया, सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी,
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं, और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हटकर के हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में, फोकलोर

हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की, और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है।

0: प्रेजेंट किया अफ्रीका में 70s में। मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई, और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ था। जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
1: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो अच्छी
0: बात है ना। और मुझे मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहां के ये मायने मेरे चार गाने किए और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कविंद बारोट जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे आप

0: फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
1: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
0: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किल थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
1: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
0: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको पता है कितना

0: छोटा आइलैंड है, 40 miles लॉन्ग आइलैंड है। उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा 6-6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
1: अच्छा।
0: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं। उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
1: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से कर रही हैं।
0: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने।
1: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को, फिल्म
0: कोशिश कर रही है।
1: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
0: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
1: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
0: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुंच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहां पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहां आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे। आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
1: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
0: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
1: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
0: जी,
1: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं। समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
0: जी,
1: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुद्र है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल हैं निगाहें नीची किए,

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं।
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर
0: तो
1: सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे।
0: अच्छा।
1: मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दारुस्सलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था। फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली, और वो भी एक किस्म का प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है,
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए। जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे, वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था। और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई।

शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में राज हट। इस फिल्म का गाना हजरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें थीं आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बैजू बावरा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम रागिनी।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में राम और श्याम फिल्म का गाना। शकील बदायनी थे गीतकार और संगीतकार थे नौशाद। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायनी और नौशाद की जोड़ी का ही लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म का नाम मदर इंडिया।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार है मजू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, फिल्म का नाम फिर वही दिल आया हूँ।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी। और जगजीत जी,
3: कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आनग्यू बैग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया।

0: उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानक और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe economic corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy

0: regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defense cyber cooperation. The MOU was exchanged between the National Defense College of India, the Korea National Defense University and the UN Peacekeeping Corporation. India has taken another important step towards strengthening its indigenous defense capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative. The Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully completed the final development trials of the unmanned aerial vehicle launched precision guided missile, marking a significant for the country. Air-to-ground and air-to-air modes at the DRDO test range near Kurnool in Andhra Pradesh. The missile was developed by Research Centre Imarat, Hyderabad, in collaboration with other DRDO laboratories. Developed entirely within the country, the project highlights the growing strength of India's domestic defence manufacturing ecosystem with the participation of MSMEs and private industries under the Atmanirbhar Bharat initiative. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations and key global issues, including Iran, the Ukraine conflict, and international trade. China's foreign ministry said the talks would deepen the strategic partnership between Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as the United Nations, SCO, and BRICS. The meeting came shortly after U.S. President Donald Trump visited China for discussions with Xi on regional and global developments. India Meteorological Department, or IMD, has issued orange alert for heat wave to severe heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh today. Punjab and Haryana are reeling under severe heat wave conditions with maximum temperatures ranging between 40 and 47 degrees Celsius across both states. The Union Territory of Chandigarh is also experiencing intense heat wave conditions. IMD has said that heat wave conditions are also expected over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Southwest Bihar, Chhattisgarh, Telangana, coastal Andhra Pradesh, Yanam, Marathwada and Odisha for the next 2 days. Meanwhile, heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala, Mahi and Lakshadweep is expected till tomorrow. Benchmark domestic equity indices paired with their early losses and traded on a flat note with a slight negative bias during the afternoon session today. The Sensex dropped 59 points to 75,142, while the Nifty dipped 12 points to 23,606 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया नई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ, कहा यात्रियों के सफर को अधिक सुगम और आरामदायक बनाना सरकार की प्राथमिकता। ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कड़ा रुख, जिन विभागों में हुई फर्जी निकासी वहां से डीडीओ को हटाने के निर्देश। रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सामाजिक कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल, राज्य को मिलेगी 85% अतिरिक्त बिजली। और हजारीबाग में ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग टूर्नामेंट शुरू, देश विदेश के 272 खिलाड़ी बिसात पर आजमा रहे हैं चालें। और अब समाचार विस्तार से। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए यात्री अनुकूल कदमों की शुरुआत की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरपोर्ट पर नवनिर्मित बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हो रही इन पहलों का उद्देश्य एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और यात्रियों के सफर को अधिक सुगम व आरामदायक बनाना है।

0: हमारे प्रयास ये है केंद्र सरकार के कि हर राज्य में जो राजधानी में जो एयरपोर्ट है वो सबसे बढ़िया रहे, सारे बाकी राज्यों से हो या बाकी बड़े शहरों से जो वो सबसे कनेक्टेड रहे, तो उसके ऊपर जरूर हमारा प्रयास भी रहेगा और हमारे तरफ से सपोर्ट भी रहेगा। यात्रियों में एक अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छी मांग भी रही है ये उड़ान यात्री कैफे के तहत। उड़ान यात्री कैफे का मकसद ये है कि कम दाम में एयरपोर्ट पे भी खान पान की व्यवस्था हो।
1: राज्य में सामने आए करोड़ों रुपए के ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि जिन विभागों में फर्जी तरीके से सरकारी राशि की निकासी हुई है वहां से डीडीओ को तुरंत हटाया जाए। श्री किशोर ने इस सिलसिले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झामुमो महासचिव मिथिलेश ठाकुर द्वारा भारत का खंडित नक्शा जारी करने पर हमला बोला है। मरांडी ने इसे देश की अखंडता पर प्रहार बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर से सार्वजनिक माफी की भी मांग की। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कल रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। रांची में आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 में श्रम एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य राज्य में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों को और प्रभावी बनाना है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यों को बेहतर गति मिल सके। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो प्रखंड में सिंगार सराय से कैरो समेत 3 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि मांडर विधानसभा में विकास की यह यात्रा जारी रहेगी और सभी वायदे चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदाचार को एक दीपक बताते हुए कहा है कि यह पूरे समाज को प्रकाशित करता है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोग इसी आदर्श के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। उन्होंने आचरण को संतुलित बनाने के लिए शास्त्रों के मापदंडों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एट AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एट AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पूरी कर 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरिक के साथ आपसी बैठक की। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान लिज्जत पापड़ उद्योग की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का आंदोलन बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि विकेंद्रित उत्पादन का यह मॉडल महिलाओं को घर बैठे आत्मनिर्भर बनाता है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी।

0: इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। धनबाद में अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए उपायुक्त और एसएसपी ने 112 पेट्रोलिंग बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सायरन, ब्लिंकर और जीपीएस से लैस इन बाइकों की सीधी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगी, जिससे शहर के तंग इलाकों में भी पुलिस रिस्पांस टाइम बेहतर होगा।
1: धनबाद पुलिस के सभी थानों को 45 स्टेट ऑफ दी आर्ट नई बाइक जिसमें सायरन्स, ब्लिंकर्स, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है वो मुहैया कराया गया है। इसका मेन मकसद ये होता है कि बाइक की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, फास्ट होती है, जो पतली गलियां हैं उसमें भी बाइक चली जाती हैं जहां हमारे फोर व्हीलर नहीं जा पाते हैं, और रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़िया है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 75,157 जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,74,000 रुपये प्रति किलो है। थाईलैंड में आयोजित थर्ड इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड की युवा निशानेबाज देवासी हेमरम को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में सम्मानित किया। उन्होंने देवासी को आधुनिक शूटिंग किट देने की घोषणा की है।
2: बच्ची एक होनहार है, चाहती है आगे बढ़ना, तो हमने इनसे कहा है कि तुम इतना चिंता मत करो, वो टोटल लिस्ट हमको बना करके दे दो, जहाँ कहीं से भी होगा जैसे भी होगा हम उस सारे शूटिंग की जो भी सामग्री होगी उतना हम व्यवस्था कर देंगे।
0: हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में चौथी ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस मुकाबले में विदेश सहित देश के 13 राज्यों से लगभग 272 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जहां उनके बीच रोमांचक मुकाबला जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया नई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ, कहा यात्रियों के सफर को अधिक सुगम व आरामदायक बनाना सरकार की प्राथमिकता। ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कड़ा रुख, जिन विभागों में हुई फर्जी निकासी वहां से डीडीओ को हटाने के निर्देश। रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सामाजिक कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल, राज्य को मिलेगी 85% अतिरिक्त बिजली। और हजारीबाग में ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग टूर्नामेंट शुरू, देश विदेश के 272 खिलाड़ी बिसात पर आजमा रहे हैं चालें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पता ही नहीं था कि यहां तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं, कोई बात नहीं, अपने कोशिश की, आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती है कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज़्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता हैं जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है, मेरा पूरा पटना शहर अमलतास गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। ये फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी ये भी बता सकते हैं आप।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम।

ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। भाई सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6 बजे, एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं, अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए, मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी, देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इतनी भीषण

तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकून देह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती हैं कि फ्लैट में रहती हूँ और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं। मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी हैं जो गंगा नदी के किनारे रहती हैं और मायके गई तो सोन नदी के किनारे, और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधु मालती गुड़हल और बारामासी

मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधु मालती गुड़हल और बारामसी का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधु मालती गुड़हल और बारामसी

लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या प्यारा है। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है।

लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोन्टाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ पांच गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नजारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीकी हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना, बंदिनी फिल्म का गीत, और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है, दो नदियों के बीच बसा है, महानदी, और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि इन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देखा।

कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नज़र आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि इतने सारे पंछी नज़र आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूँ। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम आपने यूनुस खान के संग सुना। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है, और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
4: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के

0: अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है दोपहर के 2:30 और 20 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर और आप सुन रहे हैं रेडियो इंद्रप्रस्थ। और हमारे आज के जो कलाकार हैं, यानी कार्यक्रम का नाम है एक ही कलाकार, इसमें आज जो कलाकार हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं। उनकी मुस्कान में पंजाब का भोलापन है, आंखों में अभिनय की गहराई है और रग रग में उनके सिनेमा बसता है। जी हाँ, तो आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं आपको, हाउस द जोश को हाई रखने वाले हमारे चहेते अभिनेता, कुछ समझ में आया? हाउस द जोश, जी हाँ, विकी कौशल की। तो चलिए अपने सीट की पेटी जल्दी से बांध लीजिए, क्योंकि आज विक्की के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो हम उनके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, साथ ही खूबसूरत गीतों के साथ जो उन्हीं के फिल्माए गए हैं।

0: हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार हैं ओ पी नैयर, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।
1: यूं से

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही है। राज्यपाल ने युवाओं को तकनीक आधारित कौशल से जोड़ने और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत केवल सही मार्गदर्शन और अवसर की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से दक्ष युवा भविष्य में केवल रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले भी बन सकते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में कहा कि मिडल ईस्ट में युद्ध के कारण दुनिया की स्थिति सभी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में पेट्रोलियम समेत अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को राजनीतिक रूप देना उचित नहीं है। सभी देश हित में प्रधानमंत्री की अपील का पालन कर रहे हैं। श्री सेठ ने कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में लिए गए निर्णयों के साथ खड़ा है।
1: दुनिया की स्थिति है किसी से छुपाने, भारत में तो तेल क्यों है नहीं,
2: तेल के कोई तो वही है।
1: क्रूड ऑयल का दाम आसमान छू रहा है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल भारत। मैं भी 10 दिनों से स्कूटी पे चल रहा हूँ, शहर में बाहर जाता हूँ तो एक गाड़ी में जाता हूँ, तो जो भी एक एक लीटर दो दो लीटर भी पेट्रोल डीजल बचा है, देश का पैसा बच रहा है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 18 मई से 25 मई तक चलाए जा रहे जनजातीय गरिमा उत्सव जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत आज गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तेतरडिप्पा गांव का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर गांव में संचालित विकास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। ग्रामीणों ने पेयजल और बिजली की समस्या प्रमुखता से उठाई, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। धनबाद जिला परिषद कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने इस अवसर पर कहा कि शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया मरीजों समेत अन्य जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद कार्यालय में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है और कर्मी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। अक्सर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्त की कमी को लेकर मरीजों के परिजन संपर्क करते हैं। ऐसे में जिला परिषद अस्पताल प्रबंधन के सहयोग से जरूरतमंदों तक समय पर रक्त पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
3: जिला परिषद में पहली बार ब्लड कैंप लगाया गया है। हर 15 डेज में थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो इन बच्चों का जन्म से ही इनकी जर्नी बहुत मुश्किल होती है। और अगर हम लोग कैंप नहीं लगाएंगे, हम लोग खुद ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, तो अस्पताल में ब्लड आएगा कहाँ से, इन बच्चों की मुश्किलें कम कैसी होगी। और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार ब्लड डोनेट जरूर करें।
0: रांची जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से 6 और 7 जून को रांची जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष, महिला, अंडर 11 से अंडर 19 और मास्टर्स वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। संघ ने सभी संबंधित खिलाड़ियों, संस्थानों और इकाइयों से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
1: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
0: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
1: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
0: अच्छा,
1: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या,
0: अरे वाह,
1: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, जब भी चेहरे की चमक बता रही है
1: बिल्कुल,
0: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
1: बिल्कुल,
0: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
1: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
0: अच्छा,
1: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, उस तब जाओ वहां तक पहुंचो आप, एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोप वे शुरू हो गया वहां पे।
0: अच्छा,
1: तो बस आप रोप वे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी भी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो, और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
0: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
1: बिल्कुल, और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो, इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है,
0: वो अच्छी बात है। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ है, तीर्थ जगह है, स्थान है, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो, तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है।
0: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
1: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखिए, बहुत
0: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है हमें, नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
1: हैं, तरह तरह के व्यंजन खाने मिलते हैं, जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है। मैं, मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
0: लेकिन फर्क होता है, स्वाद
1: बिल्कुल फर्क होता है,
0: क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना।
1: तो
0: यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है, फील गुड महसूस कर रही है,
1: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
0: तो चलिए, सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
1: जी।
0: तो अब एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए, तो देखिए आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताना ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटती बहुत बुरा है,
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: सद्भावना, अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए हैं, है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें, जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा और हमें खिलाएंगी भी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती हुई नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी।
1: अरे भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे

0: गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
1: बताइए तब जाके हमें हाँ शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
0: एक
1: है ना?
0: बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियाँ उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियाँ जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
0: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा भी तुमने शुरू में बताया भी था।
0: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में बपतिस्मा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य पराग कणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
0: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
1: करेगी। बिल्कुल,
0: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं, अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो, अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाक के तरीके से इस चीज को लिखा है।
1: बिल्कुल सही कहा है।
0: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगी, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे

0: उलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है, और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़
0: भाई,
1: का।
0: नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में,
1: जी
0: हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं। और
1: जी
0: उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार,
1: अरे बहुत
0: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियां, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे
1: जी।
0: में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सकें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ तीन होता है, और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने
1: अच्छा
0: लगा
1: जी, तो उनके
0: है।
1: शिक्षक का नाम और उनका

0: जो तीन
1: नाम
0: व्यूभाई
1: लड़के।
0: थे मिलके।
1: हाँ देखिए,
0: हाँ, और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा, और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया, और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है, और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक,
0: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
1: बहुत
0: भी।
1: मुश्किल है।
0: तो इसमें एक या दो ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई, जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है, और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके
0: जी
1: अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का, या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
0: जी और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है, और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ बिल्कुल, अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं, और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और तांचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं, या विवाह समारोह के अवसर हैं, या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में, और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है, और उन्होंने इसे कब और कहाँ पहना, और नहीं तो उनके पतिदेव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का।
0: हाँ,
1: तो हमसे शुरू करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना, तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं, इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको, मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है इसे हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्य प्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हैं।
0: बहुत गहरी बात है आरती है, अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो वो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं

0: तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें
0: हाँ
1: समझते समझ में आता है ना जिस तरीके से जिस भाषा को हम
0: हाँ
1: जानते हैं
0: कितनी बड़ी बात है। और
1: जी।
0: हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा,
1: जी
0: है ना।
1: अक्सर
0: हम
1: होता।
0: मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या
1: जी
0: हम विकास नहीं कर पाएंगे।
1: जी
0: लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा ली।
1: सीखिए आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी
0: हाँ
1: सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना एकदम से वो एक्टिव हो जाता है,
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने
1: तो
0: देखा होगा
1: सीखना कभी
0: कई
1: मत
0: लोग
1: बंद करिए।
0: शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका
1: हाँ
0: जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
1: बिल्कुल
0: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हो, किसी भी भाषा को सीखते हो, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में
1: बिल्कुल
0: होने लगा है,
1: जी
0: जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है, और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है, जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये
0: हाँ
1: कभी मत मन में
0: बिल्कुल।
1: लेकर आइए।
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
1: जी। और साथ ही जो वयस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है, यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
0: क्या
1: है
0: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल
1: जी।
0: डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं
1: जी
0: पीएचडी हूँ, है ना,
1: जी
0: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है।
1: जी
0: डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी
1: बिल्कुल
0: नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप
0: हाँ,
1: खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं
0: जो भीतर बदलाव
1: जी।
0: आता है वो कितना सुंदर होता है ना,
1: बिल्कुल
0: ये सबसे
1: बिल्कुल
0: बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती,
1: जी
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या
1: जी
0: लिखती हैं
1: सबका नजरिया
0: ये
1: अलग होता
0: मायना रखता
1: है
0: है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से,
0: हाँ
1: जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में
0: हाँ
1: क्योंकि
0: कितना अच्छा
1: हाँ
0: लगा
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहा है,
0: हाँ, तो
1: तो
0: वो
1: इस वजह
0: अपने
1: से
0: करीब पाते हैं ना आपको
1: बिल्कुल
0: कि ये हमारे ही लोग हैं, और भाषा एक दूसरे को जोड़ती
1: बिल्कुल
0: है
1: जोड़ती
0: ना।
1: है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है, इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है, और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं
0: क्या बात है, तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी
1: जी।
0: मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
1: बिल्कुल
0: लेकिन शौक रखना
1: बिल्कुल,
0: चाहिए
1: अपने
0: कि
1: मन से सीखिए,
0: हाँ।
1: आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से, नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें
0: आपकी
1: किस तरह से बोल रहा
0: वोकैबुलरी
1: हूं मैं।
0: बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता
1: बिल्कुल
0: है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम
1: जी
0: रखते हैं, किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं
1: बिल्कुल
0: और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी। जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषाएं
0: हाँ,
1: बोल
0: हम
1: लेते
0: चौंक
1: हैं
0: जाते हैं और
1: जी।
0: हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़
1: बिल्कुल
0: जाता है,
1: बिल्कुल बढ़ जाता है
0: देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है।
1: जी।

0: जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है, तो
1: बिल्कुल
0: भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और
1: जी
0: इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है
1: जी
0: ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ,
1: जी
0: कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया, वो एक अलग बात है,
1: जी
0: लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती है।
1: बिल्कुल
0: तो ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो बतला।
1: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पर एक श्रोता जो है उन्होंने हमें लिख कर भेजा है अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
1: वो
2: कुछ
1: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
2: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
1: जी,
2: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
1: बिल्कुल,
2: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
1: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल के
2: आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
1: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया
1: बिल्कुल
2: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, पीले रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
1: बिल्कुल,
2: है ना। तो चलिए भाषा पर बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
1: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
2: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
1: बहुत बड़ी भाषा
2: है, सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
2: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ये वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे 2-3 और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कह रहे श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
2: बिल्कुल,
1: तो वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार है जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, 2-3 भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है। हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है। और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है। और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत सिद्धांत भी सिखाते हैं।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
1: भाषा भाषा है,
2: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो, अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
2: चलिए, आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं,
2: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
2: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं।
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना,
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो। जी
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो
0: क्या
1: अर्थ
0: है,
1: है।
0: हाँ, वो
1: हाँ
0: क्या है।
1: जी
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना, अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेम पूर्ण व्यवहार। और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसा कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और
1: आपने,
0: आपने
1: हाँ
0: कोई उनकी सेवा की थी, है ना,
1: जी
0: ध्यान
1: जी
0: दिया था उनका,
1: बिल्कुल
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता।
1: बिल्कुल।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है। और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
0: अब मूल्यवान तो ये गीत ही है।
1: जी

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल,
0: प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। उन्होंने बताया इसके बारे में, और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी। तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़ पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें। एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको, गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ
0: ठीक है।
1: गुड़ को पानी में घुलने देना है, और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं। एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है इसका, मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए, और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, और फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे
1: बिल्कुल, और
0: और हमें
1: रेसिपी आपको
0: खिलाएंगे
1: वहाँ फेसबुक पेज पे मिली जाएगी,
0: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
1: समय
0: कोशिश
1: की कमी
0: करूंगी।
1: की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 18 मई से 25 मई तक चलाए जा रहे जनजातीय गरिमा उत्सव जनभागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत आज गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तेतरडिप्पा गांव का दौरा किया। उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर गांव में संचालित विकास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। राज्य के पतरातूत सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जांच का निर्देश दिया गया है। धनबाद जिला परिषद कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने इस अवसर पर कहा कि शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया मरीजों समेत अन्य जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। रांची जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से 6 और 7 जून को रांची जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष, महिला, अंडर 11 से अंडर 19 और मास्टर्स वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार।
1: और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद, 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर, बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर
2: पहाड़ों पर और

0: मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं, मतलब
1: जी
0: मुझे अल्बर्टा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त, तब तक
1: अच्छा
0: शुरू नहीं हुआ था, तो जो
1: जी
0: शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था, तो लेकिन मैं मैदान पे रह कर इतना आदी था, और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब, और
1: हाँ
0: परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्ख था कि तुम जल्दी चले आए वहां से अच्छा था वो
1: जी
0: एक अलग अनुभव था।
1: जी
0: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ, लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
1: हाँ
0: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
1: हाँ
0: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, जो
1: बहुत
0: घूमने जाओ
1: मुश्किल
0: तो अलग बात है,
1: जी
0: लेकिन आपको रहना हो, और जो कभी रहा ना हो, कभी
1: हाँ
0: रहा ना हो,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था, लेकिन वो गुजरा, और मैं 1.5 साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया,
1: अच्छा
0: हाँ 86 में।
1: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
0: और
1: वो
0: वो भी
1: सब।
0: सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अग्गे जी वहां पे
1: हाँ
0: रहे, और रविशंकर जी का वहां पे वो था, है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: यस,
0: ये सब
1: उदय
0: भी,
1: शंकर जी का
0: उदय
1: था
0: शंकर, सॉरी, उदय
1: जी
0: शंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब, कि
1: जी
0: ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे रह गए उस वक्त
1: रहते
0: वाकई हैरान होता था मैं,
1: कैसे
0: कि
1: जी
0: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है पहाड़ों में कैसे
1: बिल्कुल।
0: तो ये था।
1: मुंबई 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
0: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये सपनों की नगरी थी,
1: जी
0: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था, आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है, तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक
1: जी
0: अलग ही दुनिया थी, लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से, हम शुरू में एंटॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है उस
1: हाँ
0: पर, वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम,
1: बिल्कुल।
0: है
1: और तब तो
0: ना,
1: लंबी लाइनें
0: हाँ
1: हुआ
0: वो
1: करती
0: लंबी
1: थी
0: लाइनें हुआ करती थी, तो जीजस कॉलोनी जो एंटॉपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटॉपिल से किंग सर्कल आना वहाँ से पैदल,
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
1: हाँ,
0: में
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
0: हाँ
1: ढाल लेता
0: तो फिर
1: है
0: वो लोग अपने आप आपको उतार देते
1: जी
0: हैं तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे
0: उतार, तो
1: जी।
0: ये
1: तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहां लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहां जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी
0: चरम
1: जी
0: पर, फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
1: जी
0: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त ये
1: बजाया करते थे
0: बजाया
1: इसको
0: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए, तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो, और
1: बिल्कुल।
0: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे, तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई,
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं, कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यारा,
1: बल्कि
0: बहुत
1: हमने उनको
0: प्यारा,
1: बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
0: जी,
1: तब
0: सही
1: मैं था
0: सही
1: नहीं शहर में
0: हाँ, तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में, युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने

0: खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जो
1: जी
0: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या
0: हाँ
1: बात
0: ना,
1: है,
0: तो वो
1: क्या
0: किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने, जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
1: पेडरोड
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
1: जी
0: मैं गया। और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह, उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो
1: जी
0: रोज रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ है, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे,
1: जी
0: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी, तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह
0: वरना
1: वाह
0: अक्सर होता है
1: वाह
0: कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ,
1: जी जी
0: है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे, ये
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब
1: जो
0: है,
1: जिंदगी की किताब है। वाह
0: तो
1: वाह वाह
0: ये
1: वाह।
0: वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब, ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए। हाँ,
1: अच्छा
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ।
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और
1: जी
0: वो गजल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती
1: ओ
0: तो वो
1: हो
0: गजल, लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और
1: जी
0: चलिए।
1: जी जी ये जो जिंदगी की किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ
0: हाँ
1: पूरी तरह से जुड़ गई है, और
0: जी,
1: ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो
0: हाँ,
1: जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, तो
1: वही
0: उसको
1: अब
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही, बिल्कुल
0: और ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उस पर जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है।

0: है, वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गज़ल पे। तो ये गज़ल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुँचा दिया, यूँ कह लीजिए मुझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
0: जी
1: रिंगटोन में भी ये गजल
0: जी जी
1: बजती
0: जी
1: है।
0: जी
1: जगजीत जी ने गालिया, भूपी जी ने गालिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गालिया था
0: पंकज जी, उसके बाद
1: जी।
0: ये गज़ल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गज़ल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गज़ल पहली नज़र में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गज़ल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गज़ल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गज़ल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
1: नबील
0: जगह।
1: था,
0: हाँ
1: नबील था
0: नबील, नबील
1: जी।
0: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
1: जी
0: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गज़ल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था दूरदर्शन पर आता था गज़ल का, आरोही।
1: आरोही
0: हाँ तो ये गज़ल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
1: जी
0: अच्छा उन दिनों पता नहीं क्यों या एक नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
1: अरे
0: नीचे
1: बाप रे।
0: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
1: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
0: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
1: अच्छा है, ओके,
0: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
1: आरोही
0: इन दो
1: में
0: का क्या था।
1: गाया।
0: हाँ तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
1: आपके अपने दोस्त
0: हाँ
1: ने ये बात
0: ये मेरे
1: कही
0: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
1: जी
0: बहुत अरसे से नहीं मिले थे।
1: जी जी
0: तो ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
1: ओहो
0: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
1: जी
0: ये यही की गजल है। तो बोल, ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
1: हाँ,
0: सीरियल
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: और
1: बड़ा नाम है अजय
0: हाँ।
1: कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
1: जी
0: अच्छा दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
1: जी
0: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ तो वो पंकज जी वहाँ पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ, गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गज़ल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर बजू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया,
1: हाँ बिल्कुल
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया है, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया। हाँ ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए बजरू साहब, उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
1: जी।
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह
0: तो ये
1: वाह,
0: मजरूह
1: मजरूह जैसे
0: सुल्तानपुरी साहब का
1: बड़े
0: आशीर्वाद था,
1: शायर की
0: है
1: बात है
0: ना।
1: ये,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है। पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
0: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर तो शायरी का ही रहा।
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: उससे पहले एक मेरी

0: आजमी, मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
1: जी
0: बशीर
1: जी जी
0: बद्र, निदा साहब, निदा साहब उसके संचालन कर
1: सदर,
0: रहे थे,
1: हाँ जी
0: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे, और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
1: बाप रे
0: अजीत एक्टर,
1: जी
0: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू
1: अलग
0: सेंटर
1: ही
0: के
1: होता
0: अलग
1: था
0: ही हुआ करता था,
1: जी।
0: हॉल खचाखच भरा हुआ, तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा, तो निरा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
1: अरे
0: तो
1: बाप रे।
0: शुरुआत के एक दो इशारों में।
1: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
0: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुलाया कि मेरा पहला मुशायरा, और ये ऑडियंस, ये लोग है
1: जी
0: ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया, तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ, तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
1: हाँ
0: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता है, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा या प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया,
1: अरे अब
0: मतलब ये
1: तो शुरुआत कर रहे थे जबकि
0: हाँ
1: जी।
0: मुशायरा तो हो गया,
1: अरे
0: मतलब
1: बाप रे,
0: ये
1: बहुत बड़ी बात
0: हाँ,
1: है
0: तो ये बड़ी बात थी। तो
1: जी
0: ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
1: जी
0: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया
1: गजब
0: अपने घर पर, फिर
1: जी।
0: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ, तो ये हुआ। ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में,
1: जी
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
1: हाँ
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
1: हाँ
0: आखिरी एल्बम था ये,
1: ओहो
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
1: चले
0: दुनिया
1: गए
0: में,
1: जी
0: वो
1: जी
0: चले गए,
1: जी
0: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगी।
1: जी
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे,
1: बिल्कुल
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई, और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजी जी इसका इसका वो करें, हाँ, तो मैं
1: बिल्कुल
0: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा,
1: जी।
0: तो किताब लेके वो रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजी जी ने ये गजल गाई, और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई, ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन
0: वो कर दिया,
1: खोला
0: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया, और तालियां वालियाँ सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा,
1: जी।
0: तो बोले नहीं राजेश रुकिए, तो मैं आया, तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
1: हाँ
0: पूरा,
1: बाकायदा, और पूरा
0: हाँ
1: हॉल
0: पूरा
1: भरा हुआ
0: हॉल
1: है।
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
1: अरे
0: स्टैंडिंग
1: बाप रे।
0: माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि, तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जी
0: उनको
1: जी
0: पसंद थी गजल, तो सारे, तो वो गजल पढ़ी, जाने कितनी उड़ान बाकी, तो बात वहीं खत्म हुई। मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, हो
1: जी
0: ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए,
1: अरे गजब
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: गजब गजब
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे, ये तो
0: और
1: बड़ा
0: आपको
1: मिस
0: मालूम
1: हुआ
0: था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका, तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे
0: हाँ, जाने कितने

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजल्ट का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
1: वाह
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में
1: जबान बाकी है।
0: जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार
0: है।
1: शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे उजाले,
0: उनकी
1: उनकी
0: यादों
1: यादों
0: के
1: के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
0: सखी
1: सहेली आपके
0: सहेली।
1: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
1: जी
0: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
1: बिल्कुल
0: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी जी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
1: सब
0: से।
1: चीजों को
0: हाँ,
1: संभालते
0: सब कुछ सब संभालते थे।
1: थे।
0: तो एक अच्छी टीम थी
1: जी
0: जो हर तरह से, जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
1: बिल्कुल
0: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
1: जी
0: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
1: बिल्कुल। और हर
0: ऐसा कम
1: रोज आप
0: होता
1: एक
0: है,
1: नई चुनौती
0: ऐसा
1: सामने
0: कम
1: रखते
0: होता
1: थे।
0: है।
1: जी
0: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
1: नौशाद
0: साथ
1: साहब आ
0: कहीं।
1: रहे हैं,
0: हाँ,
1: खयाम साहब आ रहे
0: खयाम
1: हैं।
0: साहब आ गए, लक्ष्मीकांत कह रहे, प्यारेलाल जी आए,
1: जी
0: आनंद जी आए, है
1: बिल्कुल
0: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो
1: बिल्कुल,
0: सारे। और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
1: रवि जी
0: ना।
1: आए,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: खयाम साहब,
1: खयाम साहब आए, और
0: हाँ
1: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा
0: हाँ
1: है।
0: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: मुझे याद है कि
0: हमारे
1: खयाम
0: मेहमान।
1: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
0: हाँ
1: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए
0: हाँ
1: हैं, और वहीं 1 घंटे बात हो रही
0: हाँ उनको
1: है।
0: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो, उनको बोलने का बहुत वो था, वो
1: जी
0: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का,
1: बिल्कुल
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के। भी हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया उनको, कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
1: ज्यादा
0: उनके
1: कर
0: ले
1: सकते
0: सकते
1: थे।
0: हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं। ये लोग
1: जी
0: अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
1: बिल्कुल,
0: में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
1: किसी
0: है,
1: के पास नहीं।
0: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशंस पे है,
1: जी
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो हैं, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। या
1: बिल्कुल
0: गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
1: जी
0: ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा,
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीजें
0: बढ़कर
1: हैं,
0: एक
1: एक से
0: प्रोग्राम
1: बढ़
0: जो है
1: के एक हैं।
0: वो हुए। प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा है।
0: प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये
1: जी
0: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ, और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
1: जी।
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
1: जी जी
0: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
1: बिल्कुल
0: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
1: जी
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूं।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे, एमए
0: जी
1: हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो इस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
0: अरे
1: घर चला आया,
0: जी
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
0: हाँ
1: कि हम, मैंने शादी कर ली है,
0: हाँ
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं
1: उम्मीद ही
0: सकता
1: होंगी
0: था।
1: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
0: हाँ
1: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं, तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
0: हाँ
1: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
0: हाँ
1: तो मुझे यहाँ से ले जाओ,
0: अरे बाप रे
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो
0: हाँ।
1: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और
0: गजब
1: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो
0: हाँ।

0: हाँ, ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ कुआ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
1: हाँ
0: हम इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे
1: हाँ
0: उसको। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा
0: ये
1: है।
0: नहीं होने देंगे,
1: हाँ
0: मैं भी चलूंगी,
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी। तो
1: बाप रे।
0: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी,
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
1: और
0: पता नहीं।
1: ये
0: हाँ, तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ
0: सारा साहस इनका है,
1: क्या बात है
0: ये उस जमाने में।
1: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूं।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा
1: जिंदगा,
0: क्यों नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह,
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: कितने
1: हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह
0: मेरी एक
1: वाह,
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर।
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू,
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह,
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर
0: कोरे
1: गिरा,
0: कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
0: एक
1: बात है,
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना
1: गम छुपाना,
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात
0: गम
1: है, क्या
0: छुपाना
1: बात है,
0: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: शुक्रिया।
1: सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी,
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था,
1: जी जी
0: मतलब किसी
1: डिफिकल्ट
0: लाइन को।
1: होता है ये,
0: हाँ, लेकिन ये गजल मुझे वहां 2 बार पढ़नी पड़ी,
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई,
1: वाह
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूं।
1: इरशाद इरशाद।
0: अब क्या बताएं, टूटे हैं

0: हूँ, और ये शेर मुझे खास सुनाना चाह रहा हूँ।
1: इरशाद
0: इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब,
1: जी,
0: एक होता है शराब और
1: और
0: एक
1: ये
0: होता
1: होता है
0: सराब, जिसे
1: शराब
0: मृग मरीचि का
1: जी।
0: मिराज जिसे उर्दू इंग्लिश में
1: यस,
0: बोलते हैं, कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है, दिखता है, होता नहीं,
1: होता नहीं,
0: है ना, मरुस्थल में,
1: आग का धोखा है।
0: हाँ, पानी का धोखा, आग का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया, उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया।

0: से हम अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास,
1: वाह वाह, अब तो शराब
0: अब
1: से
0: तो
1: ही।

0: से हम।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: थैंक यू।
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आज के मेहमान।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। ख्वाबों को मुट्ठी में बटोरे वो बेख्याली में जिंदगी की राहों पर सरपट भागती जा रही थी कि अचानक राह पर पड़े पत्थर से टकरा गई। मुट्ठी में बंद ख्वाबों के जुगनू इधर उधर बिखर गए। उसका एक भला सा नाम था, लेकिन उसकी पहचान नाम से नहीं बल्कि उसके हुनर से थी।

उसके ख्वाबों के मोती राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए तो उसका दिल भी टूट गया। उसे दिल के टूटने की आहट हो गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की रेशमी दुशाला पहन रात के सन्नाटे में चांद से बतियाती अपना सफर पूरा करने लगी।

ख्वाबों की रेशमी दुशाला ओढ़े वो खेतों मेड़ों से जा रही थी, तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम ठिठक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का राग।

0: Agit. रेडियो की आवाज की डोर पकड़े वो खेतों से बाग की ओर चल पड़ी, जहां आम और जामुन के पेड़ों के बीच इत्र की खुशबू बिखरी थी। इत्र की खुशबू में अजब सा सम्मोहन था। उस खुशबू की ओर वो बढ़ती चली गई। फिर सुबह की उगी नरम धूप सी किसी का मुस्कुराता चेहरा था। वो कोई शख्स था या था सपनों का शहजादा? बस वो उस तिलिस्मी शख्स को भर आंखों देखती रही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनू।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे? नहीं,

0: कहो।
1: खुद पे इतराते न जाओगे?
0: नहीं, खुद पे नहीं,

दौड़ती फुदकती तितली भौरों के पीछे भागती, कोयल सरीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती, ख्वाबों का सुंदर पिटारा लिए चली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से लगी हुई फुलवारी पर उसकी आंखें ठिठक गईं। सुर्ख रंग की पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद ये वही शहजादा था, ख्वाबों वाला शहजादा।

शहजादे ने पलकों की पंखड़ी पर फूलों का झुरमुट धर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज थमा दिया। उस बीज से प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास में प्रेम का पौधा जगमग होने लगा। तब से अब तक वो गा रही है प्रेम गीत, फूलों की माला में पिरोती है प्यार के मन के।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। सायंकालीन सभा में श्रोताओं आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

शाम 5:35 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आज चर्चा होगी प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के जयंती पर विशेष जानकारी। साथ ही गर्मी के मौसम में खान पान का रखे ख्याल, इस पर चर्चा होगी। वार्ता में सुनेंगे समाज के विकास में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार होंगी सुषमा सोनी। 6:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 6:02 पर ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम सुनेंगे खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा होगी लत्तर वर्गीय सब्जियों की देखभाल। साथ ही चर्चा में सुनेंगे बकरी पालन आय का बेहतर स्रोत। वार्ता में सुनेंगे गौशाला की साफ सफाई। वार्ताकार होंगे सत्येंद्र कुमार पांडे। 6:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मधुमक्खी पालन आय का स्रोत। और आज की बात में सुनेंगे पशुपालन में महिला कृषकों का योगदान। वार्ता में सुनेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। वार्ताकार होंगे सत्येंद्र कुमार पांडे।

7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 7:10 पर जिले में आजकल आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का समय होगा 7:15 पर। कल्याणी कार्यक्रम में आज भेंटवार्ता में सुनेंगे खट्टी डकार भी बीमारी का संकेत। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अविनाश कुमार झा रांची से और इनसे बातचीत करेंगे श्री संजीव कुमार लाल। चित्रपट से फिल्म संगीत का कार्यक्रम का समय होगा रात्रि के 8 बजे।

9 बजे का समय होगा अंग्रेजी समाचार का, 9:15 पर उर्दू में समाचार और 9:30 पर आज के फनकार आप सुन सकेंगे विविध भारती से। 10 बजे वापस हम स्टूडियो में आएंगे कार्यक्रम रजनीगंधा को लेकर और 11 बजे समय होगा हिंदी में समाचार का और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का। रात्रि के ठीक 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे थे 103 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम में आप सभी श्रोता बहनों का स्वागत है। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता बहनों, गर्मी का मौसम और उस पर से इतनी तपती गर्मी, गर्मी के मौसम में भी कभी कभी शाम में अगर अच्छी हवा और बारिश की बूंदें अगर आ जाए, रोज़ ना सही कम से कम 15 दिन में भी, तो आदमी को सुकून मिलता है। पर इतनी अभी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसे में हमारा घर में बैठे रहना तो उचित नहीं है, बाहर निकलना ही है। लेकिन गर्मी के मौसम में हम कैसे अपना खान पान का ख्याल रखें, अपनी देखभाल करें, ये हमारे ऊपर बहुत निर्भर करता है। श्रोता बहनों, एक तो गर्मी का मौसम और जैसे उल्टा सीधा हमने खाना खा लिया या कहीं भी मौसम अगर जाने का नहीं है और हम चले गए काम है, तो अपनी सहूलियत से निकले, छतरी को साथ में रखें, चश्मा रखें, यानी तक कि कपड़े से लेके चप्पल तक का ख्याल रखें। किस टाइप के आपको चप्पल जूती पहनने हैं, किस टाइप के कपड़े पहनने हैं, ताकि आपको आपका पसीना सूख सके। गर्मी के मौसम में खास करके ज़्यादा हमें मलमल कॉटन के जो कपड़े होते हैं वही पहनने चाहिए और हल्के कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। हल्का कलर हमें सुकून भी देता है और ऐसे बहुत डार्क कलर अगर गर्मी के दिनों में आप पहनते हैं तो इससे घबराहट भी होती है। आंखों को सुकून देने वाला रंग ही चुनें और खान पान का ख्याल करें। ऐसे में ताजे साग सब्जियों के साथ, अगर बहुत बहनों की आदत होती है कि अगर फ्रिज में रखा एक दिन है, तो गर्मी के दिनों में आप फ्रिज में रखा भी बिल्कुल ना खाएं। वैसे तो हमेशा फ्रिज है हमारे उस सामान के लिए, दूध है दही हम रखते हैं, लेकिन हम सोचे कि गर्मी के दिनों में भी फ्रिज में रखा दूसरे दिन निकाल के खा लें, वो भी सही नहीं होता। ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं, थोड़ा बहुत बच गया वो अलग बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना बनाएं। इससे खाने की बर्बादी भी होती है और सेहत का भी नुकसान होता है, क्योंकि हम रख ही देते हैं फ्रिज में, उसको लगता है कि कैसे फेंके क्या करें, फिर उसे अगर आप खाती हैं तो ये बहुत ही नुकसान करता है। गर्मी हो या जाड़े का मौसम, हमेशा ताज़े खाने का ही उपयोग करना चाहिए। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा खीरा, तरबूज, टमाटर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें आप खाने में। दाल में अगर दोपहर के समय तीसी, वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तीसी अगर दाल के समय खाने में हल्का सा, तीसी को मार्केट से बाज़ार से लेकर आएं और उसे हल्का सा गर्म करके भून लें हल्का सा, और उसके पाउडर को बना के रख लें, नमक मिलाकर रख लें उस पाउडर में। नमक मिलाकर नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दाल में तो हमेशा नमक तो रहता ही है। खाते समय दाल में एक चम्मच उस तीसी के पाउडर को डालें, खाने का स्वाद भी बढ़ेगा और इसकी तासीर इतनी अच्छी होती है जो हमारे शरीर को भी सुकून देता है और साथ ही हड्डियों के लिए भी ये बहुत सही होता है। तो तीसी का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने खाने में, एक चम्मच डेली दाल में डाल लें या चावल के साथ भी, कैसे भी आप तीसी अगर खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करता है। तरबूज है, खीरा है, ककड़ी, एक समय रखें कि हमें 4 बजे शाम में या शाम के वक्त जैसे आप स्नैक्स आइटम लेते हैं, चाय पीते हैं, ऐसे में छाछ बनाकर पिए, लस्सी पी लें, छाछ पी लें, और ये सारे फल जो कि सुबह में हम बहनों को उतना टाइम नहीं मिल पाता, काम में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन चुनाव करें खाने का कि एक समय आपको मूंग चना खाना ही खाना है और शाम के समय आपको इन सारे फलों का इस्तेमाल करना है। ऐसे में छाछ दही में पानी डालकर पतला छाछ बनाएं पिए, इन सारी अगर हम उपयोग करते हैं तो सब चीज़ सही होगा। और अब आइए अब सुनते हैं एक मधुर

0: खूबसूरत से गाने के बाद हम एक बार फिर जुड़े हैं आपके साथ श्रोता बहनों कार्यक्रम घर आंगन के तहत। श्रोता बहनों, प्रकृति की जहां बात हो और ऐसे में हमारे सुकुमार कवि छायावाद के स्तंभ और हिंदी साहित्य को नई संवेदनाएं देने वाले महान कवि सुमित्रा नंदपंतन की जयंती पर बातें न हो, आज उनकी जयंती है। कोटि कोटि नमन करते हैं उन्हें। उनकी कविताओं में प्रकृति की मधुरता, मानवता की करुणा और सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वाणी में संगीत, शब्दों में प्रकृति और भावों में कोमलता, यही पंत जी की पहचान रही। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य प्रेमियों के हृदय में स्पर्श करती। सुमित्रा नंदपंत की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। कवियों की बात होती है और इनकी अगर हम प्रकृति के अनुपम चित्रकार, कोमल भावनाओं के अमर कवि और हिंदी साहित्य के गौरव सुमित्रा नंदपंत जी की जयंती पर हम थोड़ी बातें कर लें। श्रोता बहनों, पंत जी ने अपनी लेखनी में प्रकृति को शब्दों में जीवंत कर दिया। उनकी कविताओं में हिमालय की शीतलता, फूलों की कोमलता, पक्षियों का मधुर संगीत और मानव मन की संवेदनाएँ सहज रूप में झलकती है। वे केवल प्रकृति के कवि ही नहीं बल्कि मानवता, प्रेम और नवचेतना के भी कवि थे। उनकी रचनाएं हमें प्रकृति से प्रेम करना, सौंदर्य और को महसूस कराना और जीवन को संवेदनशील दृष्टि से देखना सिखाती है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, जैसी पंक्तियां आज भी साहित्य प्रेमियों के हृदय में गूंजती है। आज उनकी जयंती पर हम अपने साहित्य योगदान को स्मरण करते हुए उनको भावभीनी हम उनकी जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और ऐसे महापुरुषों को हमेशा हम याद करते हैं। तो श्रोता बहनों, आइए अब इसी के साथ सुनते हैं वार्ता। समाज में विकास में महिलाओं का योगदान, वार्ताकार हैं सुषमा सोनी।
1: समाज के विकास में महिलाओं का योगदान, वुमेन्स एडवांसमेंट इन सोसाइटी। समाज में महिलाओं की उन्नति किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास का आधारशिला होता है। आधुनिक भारत के समाज में महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित न रहकर शिक्षा, राजनीतिक, व्यवसाय, विज्ञान और खेल जैसे हर क्षेत्र में बढ़ रही है। समाज में महिलाओं की उन्नति के मुख्य पहलू आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमिता है। महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। आज की महिलाओं की तुलना 10 वर्ष पहले से की जाए तो 2010 में 51.9% से बढ़कर 2015 में 67.4% महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा शिक्षा में भी प्रगति हुई है। महिलाओं के साक्षरता दर और उच्च शिक्षा में भी काफ़ी भागीदारी बढ़ी है, जो उन्हें सशक्त बना रही है। राजनीतिक भागीदारी में, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की उपस्थिति जैसे पंचायती राज, विधायिका और संसद में भी बढ़ी है। इसके अलावे महिलाओं की विशेष क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ी है। तकनीक, सेना और चिकित्सा जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही है। महिलाओं की उन्नति के लिए आवश्यक कदम लैंगिक समानता भी है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। वे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर समान अवसर का लाभ उठा रही हैं। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, मातृवंदना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना विशेष रूप से चला रही है, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी कर रही है। इन सभी के बावजूद भी महिलाओं के साथ बहुत सारी चुनौती। समाज के विकास में महिलाओं का योगदान, वुमेन्स एडवांसमेंट इन सोसाइटी। समाज में महिलाओं की उन्नति किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास का आधारशिला होता है। आधुनिक भारत के समाज में महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित न रहकर शिक्षा, राजनीतिक, व्यवसाय, विज्ञान और खेल जैसे हर क्षेत्र में बढ़ रही है। समाज में महिलाओं की उन्नति के मुख्य पहलू आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमिता है। महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। आज की महिलाओं की तुलना 10 वर्ष पहले से की जाए तो 2010 में 51.9% से बढ़कर 2015 में 67.4% महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा शिक्षा में भी प्रगति हुई है। महिलाओं के साक्षरता दर और उच्च शिक्षा में भी काफ़ी भागीदारी बढ़ी है, जो उन्हें सशक्त बना रही है। राजनीतिक भागीदारी में, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की उपस्थिति, जैसे पंचायती राज, विधायिका और संसद में भी बढ़ी है। इसके अलावे महिलाओं की विशेष क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ी है। तकनीक, सेना और चिकित्सा जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं की उन्नति के लिए आवश्यक कदम लैंगिक समानता भी है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। वे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर समान अवसर का लाभ उठा रही हैं। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, मातृवंदना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना विशेष रूप से चला रही है, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी कर रही है। इन सभी के बावजूद भी महिलाओं के साथ बहुत सारी चुनौतियों का सामना आती है। सामाजिक रूढ़िवादिता, सांस्कृतिक अवरोध और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। समाज में महिलाओं के स्थान को मजबूत करने के लिए शिक्षा के साथ साथ मानसिकता में बदलाव और पुरुषों का समर्थन भी आवश्यक है। सशक्त महिला ही एक समृद्ध और विकसित समाज का निर्माण कर सकती है। जब महिलाएं शिक्षित, स्वस्थ एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं तो इसका सीधा लाभ परिवार, समुदाय और संपूर्ण राष्ट्र को मिलता है। समाज परिवर्तन में भी महिलाओं की बढ़ चढ़कर भूमिका होती है। कहा जाता है कि अगर किसी परिवार को शिक्षित करना हो या फिर परिवार का नैतिकता और मूल्यों की शिक्षा देनी है तो इसमें महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को समाज में परिवर्तन के प्रमुख प्रेरक के रूप में अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए तथा जागृति पैदा करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक विकास में भी महिलाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज की महिलाएं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था को सुधारते हुए न केवल घर को संभालती है, बल्कि बच्चों को संस्कार देकर भावी पीढ़ी का निर्माण करती है। शिक्षित महिलाएं परिवार की स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की स्थिति में भी सुधार करती है, जो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होता है। स्वयं सहायता समूहों SHGS और लघु उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं कृषि, हस्तकला और अन्य कार्यों में भी योगदान देकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में जैसे आशा कार्यकर्ता महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और पोषण को भी बेहतर बना रही हैं। नारी शक्ति वंदन एक्ट जैसे कानूनों के साथ साथ संसद में 33% आरक्षण जैसे पहले महिलाओं को नीति निर्माण और शासन में सक्रिय भूमिका निभाने में भी सक्षम है। महिलाएं रीति रिवाज, कला और संस्कृति को भी जीवित रखती हैं और उन्हें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भी पहुंचाती हैं। अतः आज का समाज जानता है कि आज की महिलाएं केवल परिवार की देखभाल तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज में एक उत्प्रेरक के रूप में सकारात्मक परिवर्तन भी ला रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना सीधे तौर पर पूरे समुदाय और राष्ट्र के विकास से भी जुड़ा है। आज की महिलाएं अपनी सामाजिक समझ और संवाद कौशल के कारण सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से सफल हो रही हैं। यह सामाजिक समृद्धि और जीवन स्तर को भी बढ़ा रही है। लैंगिक समानता महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी निभाती है तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं और उन्हें समाज में सम्मान और स्वीकृति प्रदान करती हैं। समाज में महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे अपने घरों की सभी समस्याओं का भी समाधान करती हैं। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में मदद करता है। आर्थिक विकास और राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि में भी मदद करती है। महिलाओं में मुख्य तौर से 5 शक्तियां विशेष रूप से पाई जाती है। सौंदर्य की शक्ति, धन की शक्ति, रिश्तेदारों की शक्ति, पुत्रों की शक्ति और सद्गुणों की शक्ति। जब एक स्त्री में ये 5 शक्तियां होती हैं तो समाज में भी आत्मविश्वास के रूप में उभरती हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं समाज और सरकार के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि एक महिला पढ़ी लिखी है तो वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर बनाती हैं। वह आत्मनिर्भर बनकर बच्चों की शिक्षा।
0: इसी वार्ता के साथ आज घर आंगन कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार शाम के 6 बजे।
1: नारी का परिवार पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। एक माँ बच्चों की पहली शिक्षिका होती है। आज कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं की अहम भूमिका देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा लगभग 80% छोटे किसान और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संभाला जाता है। आज की महिलाएं सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाकर समाज को सुधारने का भी प्रयास करती हैं। इस प्रकार इन सभी का मुख्य तौर से यह निष्कर्ष

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र मेला भारत टेक्स 2026 का आयोजन इस वर्ष 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव ने आज आगामी

0: वस्त्र प्रदर्शनी के अनुरूप भारत टेक्स मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुश्री राव ने कहा कि मोबाइल ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खोज के जरिए प्रासंगिक उत्पादों, आपूर्तिकर्ताओं और स्टॉल के स्थानों को तलाशने में विक्रेताओं और प्रदर्शकों के लिए मददगार होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आए अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने आज रांची सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। आकाशवाणी डाल्टनगंज नियंत्रण कक्ष के तकनीशियन श्री मनोज कुमार का कल उनके पैतृक स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके आकस्मिक मृत्यु से आकाशवाणी रांची और डाल्टनगंज के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और ईश्वर से यह कामना की उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, अभी पलामू का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जा रहा है, लू का प्रकोप भी जारी है। इस भीषण गर्मी से बचने की आवश्यकता है सभी को। कहते हैं न कि जान है तो जहान है। जी हाँ श्रोताओं, अपने जान माल की रक्षा करना आपको खुद ही करनी चाहिए, कुछ सावधानियां बरत कर, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि अनावश्यक दिन में ना निकले, और यदि निकलना भी पड़े तो सर को ढक कर निकले ताकि सूर्य की तेज किरणें सीधे सिर पर ना पड़े। खाली पेट कदापि ना निकले, भरपेट भोजन करके ही निकले। साथ में पानी का बोतल जरूर रखें। खान पान पर भी विशेष ध्यान दें, चूँकि गर्मी में पसीने के रूप में शरीर से पानी निकल जाती है, और इसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि आप पेय पदार्थ का सेवन अधिक से अधिक करें। नमक चीनी का घोल का इस्तेमाल करें। शिकंजी, छाछ वगैरह भी लेते रहना चाहिए। तले भुने चीज़ों से परहेज करें। एक शाम का पका हुआ भोजन दूसरे शाम ना करें तो अच्छा होगा। ताजे भोजन लें और मौसमी रसीले फल सब्जियों का तो सेवन अधिक से अधिक करें। साथ ही संतुलित आहार लें, यानी अंकुरित अनाज लें, फल सब्जियों का सेवन अधिक करें। तो इन छोटी छोटी सावधानियों को बरतकर आप न सिर्फ गर्मियों में अपनी सेहत की रक्षा कर सकते हैं बल्कि गर्मी का आनंद भी ले सकते हैं। और देखिए गर्मी में कितने तरह तरह के फल सब्जियां मिलते हैं बाज़ारों में, तो इसका सेवन आप ज़रूर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। चलिए श्रोताओं, अब हम बातें करेंगे कि गर्मी में सब्जियों, लत्तर वाली सब्जियों, या गर्मी में हमारे किसान भाई कैसे अपने सब्जियों की देखभाल करें। तो देखिए श्रोताओं, अभी जो गर्मी का असर है, यानी लू भी चल रहे हैं, तो ऐसे में हरी सब्जियों पर इसका प्रभाव

तुरंत पड़ जाता है, सब्जियां झुलसने लगती है। और इस मौसम में सब्जियों की देखभाल करना किसानों के लिए चुनौती बन जाता है। तो गर्मी में सब्जियों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर सिंचाई करते रहें, यानी कि उसमें जो जड़ें हैं वहाँ पर नमी होनी चाहिए। और लेकिन ध्यान दें कि दोपहर की तेज़ धूप में कभी भी सिंचाई ना करें, इससे उस पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। जब भी सिंचाई करनी हो तो सुबह में करें या शाम में सूरज ढलने के बाद ही करें। आप चाहें तो इसके लिए ड्रिप सिंचाई विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं या फव्वारा विधि तकनीक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आजकल ये काफ़ी कारगर हो रही है और ये बहुत ही कारगर है सब्जियों के, खासकर सब्जियों के उत्पादन के लिए, क्योंकि इससे जो है पानी जो है वो सीधे सब्जियों की जड़ों तक पहुंचाई जाती है और वहाँ पर नमी जो है वो बरकरार रहती है, और साथ ही साथ वहाँ पर जल का जो जमाव हो वो नहीं हो पाता है। तो ध्यान रहे कि आप पानी का जो सिंचाई है वो बौछार विधि से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा श्रोताओं, फसलों को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए मल्चिंग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, और आजकल मल्चिंग विधि जो है वो बहुत ज़ोर से इस तकनीक को अपनाई जा रही है, क्योंकि इसके एक नहीं कई फायदे हैं। न सिर्फ ये गर्मी से बचाते हैं बल्कि जाड़े में पालों से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ये खेत के कतारों के बीच सूखी घास, पुआल या प्लास्टिक मल्चिंग सीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं मल्चिंग के लिए अपने खेतों में पड़े घास, पुआल, ये सूखी पत्तियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। तेज धूप से बचने के लिए वो फसलों के ऊपर इन सूखी पत्तियों और पुआल को ढक देते हैं, और कुछ किसान भाई प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, और इससे जो है बहुत ही आज ये जो विधि है काफ़ी काफ़ी अधिक हमारे किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। इससे ना सिर्फ मिट्टी में नमी बरकरार रहती है बल्कि सूर्य की सीधे किरणें हैं वो उस पे नहीं जाती, यानी सूर्य की किरणें भी उसे रोकती हैं, और ये ज़मीन में काफ़ी समय तक ठंडक बनी रहती है, नमी बनी रहती है, और खरपतवार निकलने की भी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ तेज़ धूप और गर्म हवाओं का सीधे संपर्क नहीं हो पाता है और इससे भी बचाव हो पा सक होता है। और आजकल जो हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं वो ग्रीन नेट या शेड का भी प्रयोग कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और ख़ासकर नर्सरी और नाजुक सब्जियों वाली फसलों के लिए इसे लगाना बेहतर होता है, और इससे धूप जो है वो फिल्टर होके आते हैं और पौधे जो है झुलसने से बच जाते हैं। इस मौसम में उन्हें पोषण देना भी अलग से बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो है नाइट्रोजन वाले जो पदार्थ हैं उन्हें फसल हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और ऐसे में हमारे किसान भाई को चाहिए कि जो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अलग से वो जैविक खाद का प्रयोग करें या फिर लिक्विड खादों का छिड़काव भी कर सकते हैं। लिक्विड खाद यानी कि आजकल जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, ये सब का भी प्रयोग आजकल कर रहे हैं हमारे किसान भाई, और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। सब्जियों की अगल बगल चाहे तो हमारे किसान भाई फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर वातावरण जो है वो ठंड बनी रहेगी और काफ़ी हद तक जो लू और धूप है उनसे उनका बचाव हो सकेगा। इसलिए अगल बगल, क्यारी के अगल बगल आप ऊंचे ऊंचे पौधे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को चाहिए कि वे जैविक खाद का प्रयोग करें अधिक से अधिक, इससे भी उनमें जो टिकाऊपन है सब्जियों में वो बना रहता है। और इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हमारे किसान भाई चाहे

गर्मी में भी वो आसानी से सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और यदि हमारे किसान भाई कद्दू, नेनुआ, झिंगी इत्यादि लगाए हैं तो उसके लिए ध्यान रहे श्रोताओं कि आप मचान का प्रयोग जरूर करें। इससे सब्जियों का उत्पादन तो बेहतर होता ही है और उनकी क्वालिटी में भी सुधार होता है। लत्तर वाली सब्जियों के लिए मचान इसलिए भी आवश्यक है, अगर मचान नहीं होती है तो सब्जियां जो हैं वो ज़मीन में लूटने से उनकी गुणवत्ता में कमी आ सकती है या गर्मी के स्पर्श से वे झुलस भी सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई गर्मी से बचने के लिए मचान का प्रयोग करें और इसी प्रकार से वे चाहें तो गर्मी में भी सब्जियों की खेती कर सकते हैं और इसका जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं। तो चलिए जानकारी के बाद श्रोताओं अब हम आपको सुनवाते हैं वार्ता। गौशाला की साफ सफाई इस पर जानकारी देंगे सत्येंद्र कुमार पांडे, तो आइए सुनते हैं।

गौशाला की साफ सफाई कितना आवश्यक, येन वेदध्वनि ध्वानतम न च गोमयलंकृतम येन बालै परिवर्तितम भंसानी भिवम तदम गृहम। जिस घर में गाय नहीं है वहाँ वेदध्वनि नहीं होती, और घर बालकों से भरा पूरा न हो वह घर घर नहीं श्मशान है। हम अपने घर को श्मशान न बनाएं, गोपालन करें, घी दूध की नदियाँ प्रवाहित करें, जिससे हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा देश भारतवर्ष पुनः पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। वैदिक सनातन संस्कृति में गोवंश का अत्यधिक सम्मान इसलिए दिया जाता है या था, क्योंकि पग पग पर मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में गव्य पदार्थों का प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, लौकिक के साथ परलौकिक कार्य हो, या हो मनुष्य से जुड़े स्वास्थ्य का प्रश्न या कृषि से जुड़े प्रश्न, सभी का उत्तर गोवंश है। विलक्षण एवं दिव्य गुणों से परिपूर्ण हमारा गोवंश धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है। इस हेतु गोवंश पालन, रक्षण, संवर्धन हमारा आवश्यक कर्तव्य है। गोदुग्ध, अनाज, औषधि दोनों के साथ पंचगव्य माँ औषधि भी है, जिससे असाध्य रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर्व रोगहारा गोमाता का पठन पाठन, गो पूजन, गोदर्शन, गोग्रास दान आदि का नियम बनाकर भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। सनातन धर्म में गाय को पूज्या और गो संपदा या गोधन माना गया है। हम सब अपने व्यस्त समय में भी कुछ समय गोवंश पर विचार विनिमय के निकालें और उन्हें भी अपना बंधु या परिवार का अंग समझें। माँ शब्द की उत्पत्ति भी गाय से हुई है। जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा के मुख से माँ शब्द का उच्चारण होता है। देश के स्वतंत्र हुए 76 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गो हत्या पर प्रभावी ढंग से रोक नहीं लग सकी है। यह तब है जबकि संविधान में गो हत्या पर प्रतिबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। नीति निर्देशक तत्व राज्य और केंद्र को सरकारों की नीति निर्धारण में पथ प्रदर्शन के लिए है। संविधान का अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विधि स्पष्टता, गाय बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की नस्लें में सुधार के साथ साथ उनके वध पर रोक लगाने का कदम उठाएगा। निर्विवाद रूप से हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार गंगा, गौ और गायत्री रहे हैं। गाय को कामधेनु तथा सर्व देवमयी गोमाता माना गया है, क्योंकि वह हमें दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र के रूप में पंचगव्य प्रदान करती है। वेदों में कण कण में गाय के प्रति कृतज्ञता के भाव की अभिव्यक्ति है। भारत पुरातन काल से ही सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे को पूज्य मानता रहा है। प्रकृति का कण कण हमें देता ही है। इस प्रकृति संरचना में गाय को भारत में विशेष दर्जा दिया। जब मदन मोहन मालवीय भारतीय गोरक्षा प्रचार मंडल के काशी के

0: सभापति थे तब उन्होंने कहा था, मैं मानता हूँ कि गऊ के बराबर मनुष्य का उपकार करने वाला कोई दूसरा जीव है ही नहीं। गाय घास खाकर और जल पीकर मनुष्य को दूध से तृप्त करती है। उसके बछड़ों के द्वारा हमारी खेती हो, वह कपास उगाकर हमें पहनने के लिए वस्त्र देती है और मरने के बाद भी अपनी हड्डी और चर्म से मनुष्य की सेवा करती। इसलिए ऋषि लोग सृष्टि के आरंभ से गाय को पूजते हैं और गो माता कहते। मुगल काल में बादशाह अकबर के दरबार में जब एक गोकसी करने वाले को पेश किया गया तो उन्होंने उसे सरेआम 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया ताकि कोई भविष्य में गोकसी की बात सोच भी। पर ने कहा था, मैं गाय को अपनी माँ के बराबर मानता हूँ। जब मेरी माँ का दूध सूख गया था तब मैं गाय के दूध पर ही पला। गाय मेरी माँ है, इसकी हत्या मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। ध्यान रहे कि हाल ही में उल्का पिंड के प्रमुख ने भी गाय के राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की है। ऐसे ही मांग अन्य लोग भी कर रहे हैं। यह भी बताते चलें कि गोबर के कंडे से अंतिम संस्कार करने की प्रथा कुछ राज्यों में है। यह पर्यावरण के अनुरूप होने के साथ ही कम लागत में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गोबर पर अंतिम संस्कार की पहल को बढ़ावा देते हुए इसे पर्यावरण के लिए उपयुक्त उपाय माना है। देसी गोमाता का दूध अमृत तुल्य है। कारण है कि वैज्ञानिक शोध में पता चला कि भारतीय नस्ल की गाय के दूध में प्रोटीन A2 पाया जाता है जो सुपाच्य है। वह अनेकों प्रकार से शरीर मन को पोषण प्रदान करता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। 50 केजी देसी गाय के दूध में 1 ग्राम स्वर्ण मात्रा पाई जाती है। भारतीय गोवंश के इन तमाम गुणकारी लाभ के कारण गौशालाएँ जो इनका आश्रय स्थल है, सफाई की आवश्यकता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। गाय के गोबर गोमूत्र के सही उपयोग हेतु संक्रमण न फैले, स्वस्थ गाय रहें, सफाई महत्वपूर्ण है। यूँ तो सरकारी स्तर पर भी गाय शेड बनाने की योजना भी चलाई जा रही है जिससे साफ सफाई, भोजन हेतु नाद रोशनी आदि की व्यवस्था की जाती है। सूर्य की रोशनी सीधा इन्हें मिले इसकी व्यवस्था की जाती है। इनके भोजनादि में कुछ अन्न भी दिए जाते हैं जिससे हानिकारक जीवाणु का फैलाव न हो, उसका प्रभाव गोवंश से प्राप्त होने वाले घटक विषाणु रहित हों। गौशाला की साफ सफाई अति आवश्यक। विश्व में मात्र एक ही प्राणी भारतीय गाय है जिसका आम जीवन के साथ सीधा लगाव व ताल्लुक है, क्योंकि धरती का पोषक तत्व गाय के गोबर गोमूत्र से प्राप्त होता है जिसे सृष्टि प्रभावित होता है। ऐसे गोवंश की सुरक्षा संवर्धन हेतु गौशालाओं की सफाई अति महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि लावारिस घूमने वाले गोवंश पर सरकार के अलावे आम जन को भी इसे बेस कीमती गोधन को बचाने में अपना बहुमूल्य समय अपने जीवन रक्षा हेतु भी करना चाहिए, ताकि जिस गति से इनका क्षय हो रहा है आने वाले समय में गाय को चिड़ियाघर में देखने को मजबूर होना पड़ेगा तथा प्राकृतिक असंतुलन अवश्यंभावी है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता गौशाला की साफ सफाई। वार्ताकार थे सत्येंद्र कुमार पांडे। अब हम बातें करेंगे श्रोताओं कि बकरी पालन किस प्रकार से हमारे ग्रामीण परिवेश में एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो रहा है, क्योंकि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम निवेश करके भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, या किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि इससे उन्हें कई तरह के फायदे मिलते हैं। बकरी पालन शुरू करने में ज़्यादा लागत भी नहीं आती क्योंकि बकरियां छोटी होती हैं, उनकी खुराकें भी कम होती हैं, इसलिए उनकी देखभाल में बहुत कम खर्च आता है। और साथ ही छोटी जगह जहां पे हमारे किसान भाइयों के लिए, वैसे किसान भाई जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है या बहुत कम जगह है, वैसे में भी वो आसानी से अब बकरी पालन व्यवसाय को अपना सकते हैं। और देखा जाए तो बकरी पालन में जो गांव की महिलाएं हैं उनका भी सहयोग होता है, यानी पूरे परिवार का इसमें सहयोग होता है और सबके सहयोग से इस व्यवसाय को फलने फूलने में काफ़ी आसानी होता है। बकरी से सिर्फ दूध ही नहीं मिलता बल्कि मांस, ऊन, खाद और इस प्रकार से कई उत्पाद तैयार हो जाते हैं इसे, और इन सभी को बेचकर हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छा जो है अपना कमाई कर सकते हैं, यानी इसे आमदनी का अच्छा स्रोत भी माना जा सकता है। बकरियों की देखभाल करना तो आसान है ही क्योंकि वे कम ही जगह में कम लागत में आसानी से पाले जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे

वो ये कि बकरियां जो हैं वो विभिन्न प्रकार के मौसम परिस्थितियों में भी अपने को ढाल लेती हैं, यानी कि इसके लिए किसी भी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो उसमें आसानी से इस व्यवसाय को अपनाया जा सकता है। और बकरी से मिलने वाले दूध और मांस में कई पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। बकरी का दूध जो है वो प्रोटीन से भरपूर होता है, साथ ही साथ खनिज से भी भरपूर होता है और इसे पचाना भी आसान होता है। इसलिए बकरी के जो दूध हैं उनकी कीमत भी अधिक होते हैं और इसीलिए किसानों को मुँह मांगी कीमत इससे मिल जाती है। तो बकरी पालन हमारे किसान भाई चाहे तो दूध उत्पादन के लिए या मांस दोनों के लिए कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि वे इसके अलावा बकरियों से जो खाद मिलती है वो पर्यावरण के लिए या बोले खेतों के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि इनकी जो खाद मिट्टी में मिलाई जाती है तो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। और बकरी पालन सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं देता बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहर किसान हैं या फिर बेरोजगार युवा हैं इन सभी के लिए ये आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। इससे जो है ये आत्मनिर्भर बन सकते हैं, चाहे वो युवा हों चाहे वो महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यदि देखा जाए तो बकरियों को एक चलता फिरता एटीएम भी कहा जाता है। वो इसलिए श्रोताओं क्योंकि हमारे किसान भाइयों को इसकी नगद जो राशि है वो मिल जाती है और जब बकरियां साल में 2 या 3 बार बच्चे देती हैं और जब शादी के अवसर होते हैं या फिर पर्व त्यौहार के अवसर होते हैं तो इससे किसानों को बहुत ही अच्छा इसमें मुनाफा मिल जाता है और एक बार में वे 3-4 हज़ार या उससे भी अधिक में अपने बकरियों को बेच देते हैं और इससे उन्हें नगद राशि तुरंत मिल जाती है और जब उनकी ज़रूरतें होती हैं तब वो इसे बेच कर वो जो है वो अपने इनकम या आय को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार इसीलिए बकरियों को चलता फिरता एटीएम भी कहा जाता है। और यदि हम कहें तो बकरियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसे गाय भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है उनके आय का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और इससे उन्हें कई प्रकार से लाभ मिलते हैं। तो बकरी पालन निश्चय ही हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और हमारे किसान भाई इसका जो है लाभ ले रहे हैं, बशर्ते कि उसकी देखभाल थोड़ी अच्छी प्रकार से की जाए और समय पर उन्हें टीका दिलवाई जाए तो इससे उन्हें और अधिक लाभ मिल सकता है। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। बहनों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे मधुमक्खी पालन से, क्योंकि आज विश्व मधुमक्खी पालन है दिवस है, और इसलिए मधुमक्खी पालन के बहुत सारे फायदे हैं। पर्यावरण के लिए व्यवसाय के रूप में देखा जाए या कृषकों के लिए, हर तरह से फायदे ही फायदे हैं। तो इस पर थोड़ी बहुत जानकारी की बातें ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बहनों कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ खेती के साथ साथ पशुपालन, बागवानी तथा अन्य सहायक व्यवसाय का भी विशेष महत्व है। और

आज के समय में हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो खेती के लिए मधुमक्खी पालन करके अपने आय के लिए बहुत ही अच्छा जरिया उनके लिए साबित हो रहा है, क्योंकि मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कृषि उत्पादन बढ़ाने

जरिया साबित हो रहा है, क्योंकि यह कम भूमि कम पूंजी में से शुरू किया जा सकता है। और किसान, हमारे जो किसान भाई हैं, वो मधुमक्खी पालन करके सालों भर इससे कमाई कर सकते हैं। मधुमक्खी

कि इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो भी उन्हें समय बचता है अपने घर की जिम्मेदारियों से उसमें उस मधुमक्खियों की देखभाल कर सकती है। और सच पूछा जाए तो आज बहुत सारी बहनें इससे जुड़ी हुई हैं इस व्यवसाय से, और इसका लाभ भी ले रही हैं। इतना ही नहीं, वे आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी महिलाएं जो है सामूहिक रूप से मधुमक्खी पालन करके अच्छा जो है

वृद्धि के लिए जो भी कदम हो वो भी उठाया जाए। कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करनी चाहिए, नहीं कीटनाशकों के प्रयोग से उनकी जो है हानि पहुंचती है और उनकी संख्या में

ग्रामीण एवं शहरी गरीबों को टिकाऊ आय प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह गठन किया जाता था और रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। 66.97 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 22 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्तमान में 6 योजनाओं को एकीकृत कर लागू किया गया है। इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्राइसम, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, ग्रामीण कारीगर को टूल किट, गंगा कल्याण योजना एवं अन्य आपूर्ति कल्याण योजना को मिलाकर बना है। इस योजना के तहत सरकार गतिविधि समूहों को लोगों की योग्यता और कौशल के आधार पर स्थापित किया जाता है। एनजीओ, पंचायती राज संस्थान, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, तकनीकी संस्थान, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान इसके लिए जरूरी कोष प्रदान करते हैं। इस योजना का नाम अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है। बाद में इस योजना को आजीविका मिशन के नाम से जानते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य पूरे देश में ग्रामीण इलाके में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके गरीबों को कम करना, गरीबी कम करना मुख्य लक्ष्य है। समूह ऋण की पूंजीकरण, सूक्ष्म उद्यमों का सक्षम कार्यक्रम जिसमें स्वरोजगार के हर पहलू को शामिल किया गया है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, बैंक, लेखा विभाग, पंचायती राज संस्थान, एनजीओ का एकीकरण, बैंक क्रेडिट प्लस सरकारी सब्सिडी जैसे मिश्रित आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां प्रदान करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करके सीधा लाभ लिया जा सकता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गांव के निर्धनों में से असुरक्षित दलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इसमें 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा 40% महिलाएं एवं 3% विकलांग को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान में इस योजना को प्रधानमंत्री स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से संबोधित करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को अनुदान तथा लोन मुहैया कराकर गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 3,75,000 स्वरोजगारियों को 1,370,68,00,000 का अनुदान तथा लोन दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में निरंतर आय सृजन के अवसर उत्पन्न करने के लिए गरीब नागरिकों की क्षमता को बढ़ाया गया है। इसके अलावा प्रत्येक इलाके की जमीन पर आधारित तथा अन्य संभावनाओं के आधार पर भारी मात्रा में छोटे उद्यमों की स्थापना पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। योजना की मूल्यांकन की आवश्यकता, योजना की सफलता व असफलता के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। इस योजना का वास्तविक क्रियान्वयन जैसे हितग्राहियों की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही है, ताकि समय रहते समस्याओं कठिनाइयों की पहचान की जा सके और उनका निराकरण का प्रयास किया जा सके जिससे रिटेंशन रेट बढ़े। जिन उद्देश्यों को लेकर
योजना चलाई जा रही है उसकी प्रतिपूर्ति हो रही है या नहीं, मुख्य रूप से यह जानने की आवश्यकता है कि विशेषकर गरीबी रेखा के ग्रामीण युवाओं के जीवन यापन के स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में योजना से क्या कोई परिवर्तन आया है। विभिन्न योजनाओं का

एकीकरण कर इस योजना को सीधे भारत सरकार अपने स्तर से क्रियान्वित कर रही है। इसमें 75% केंद्र सरकार एवं 25% राज्य सरकार का अंश है। यह योजना कुल मिलाकर ग्रामीण गरीबी पर आय बढ़ाने हेतु युवाओं का कौशल विकास एवं रहन सहन सुधार के लिए है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों का सामाजिक संगठन बनते दिखाई देता है। इस योजना में बैंक एवं सामाजिक संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस योजना के अंतर्गत क्रियाकलाप का चयन एक ब्लॉक 10 क्रियाकलाप चुन सकता है जो मुख्य जोर स्थानीय संसाधन, लोगों की व्यवसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर है। समिति मुख्य क्रियाकलापों के चयन के लिए जिम्मेदार है। सभी चुने गए क्रियाकलापों को पंचायत समिति द्वारा अनुशंसित होना चाहिए तथा अंतिम तौर पर जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इस योजना में रिवॉल्विंग फंड 25,000 है जिसमें शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि 10,000 सम्मिलित रहती है। कौशल विकास हेतु 5,000 रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान है। अधोसंरचना के तहत विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों का वितरण हो सके। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 30% की एक समान दर से सब्सिडी देने का प्रावधान है जो कि अधिकतम 7500 रुपये होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग के संबंध में 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है जो अधिकतम 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। यह 1,00,000 रुपये जो भी कम होगी। इस योजना के अंतर्गत समूह के गठन के साथ साथ उनकी क्षमता निर्माण के लिए एनजीओ को शामिल किया जाता है जिसमें प्रेरक को 4 किस्तों में 10,000 प्रति समूह प्रदान किया जाता है। कुल मिलाकर यह योजना गरीबों को विभिन्न आयामों से जोड़ने का सार्थक प्रयास है बशर्ते इसका मूल्यांकन समय समय पर होते रहे। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण महिलाओं में जागृति देखने को निरंतर मिलता है जो अच्छे संकेत हैं।

पूरी तरह से विकास होना संभव नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि महिलाओं की जो इसमें हिस्सेदारी है वो ज़रूर होनी चाहिए। और देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश में कृषि में तो उनका योगदान होता ही है, लेकिन साथ साथ में पशुपालन में भी उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।

पशुओं को चारा देना, पानी पिलाना, साफ सफाई करना, दूध निकालना, गोबर इकट्ठा करना, बछड़ों की देखभाल करना है, पशुओं को समय पर दवा देना, ये सभी कार्य महिलाएं बड़ी ही लगन से करती हैं, मेहनत से करती हैं। तो

घी निकालना, मक्खन निकालना, पनीर निकालना, ये सब में भी उनकी जो भूमिका है वो सक्रिय सक्रिय भूमिका होती है और इनकी वो बिक्री भी करती हैं। तो इस प्रकार से आय, परिवार की आय बढ़ाने में भी उनका जो काफ़ी सहयोग होता है। और आत्मय और देखा जाए तो आर्थिक निर्भरता में भी उनका जो है वो काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि आज महिलाएं हैं वे स्वयं सहायता समूह बनाकर भी डेयरी पालन से जुड़ रही हैं।

0: कर रहा है?
1: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी।
3: और श्रोताओं, अब जाने के पहले एक नजर डालते हैं आज के मौसम के मिजाज पे। तो श्रोताओं, डाल्टनगंज शहर का अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर

सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा एआई और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक शिक्षा अहम। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट के दौरान कहा कि सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की रखते हैं बड़ी क्षमता। देवघर में 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद पड़े रहने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, की सीबीआई जांच की मांग। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने पीएमएलए की विशेष अदालत में किया आत्मसमर्पण, अदालत ने दी सशर्त जमानत। और 15वीं झारखंड राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 के मद्देनजर रांची जिला सीनियर तैराक

0: की टीम के लिए ट्रायल 23 मई को। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोम में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बातचीत का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करना है। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की।
1: यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही हैं। राज्यपाल ने युवाओं को तकनीक आधारित कौशल से जोड़ने और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेई विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति के महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट के दौरान मुंबई स्थित लिजत पापड़ इंटरनेशनल एम्पावरमेंट सेंटर का दौरा कर उसे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन का प्रेरक उदाहरण बताया। कल्पना सोरेन ने जोर दिया कि इस तरह के सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की बड़ी क्षमता रखते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, घास उद्योग जैसे लघु उद्यमों से जोड़ना जरूरी है। देवघर में 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद पड़े रहने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण शहर में जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, जबकि प्लांट वर्षों से बंद पड़ा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और जनता के पैसे का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया के बिगड़ते भू राजनीतिक हालात को लेकर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, हालांकि फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है। रांची दौरे पर पहुंचे मंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन समेत सभी क्षेत्र संभावित प्रभावों का आकलन कर अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तैयार कर रहे हैं।
2: जिस तरह के वेस्ट एशिया क्राइसिस के साथ एक सिचुएशन बना है फ्यूल के साथ, ये केवल भारत में नहीं बाकी सारे देश में भी इस तरह है, तो उस सिचुएशन को हमें अपने कंफर्ट को रखते हुए जितना हो सके हम पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें, हमारे जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन लेके आए जिससे कि ये फ्यूल की जो क्राइसिस है उसके ऊपर थोड़ा सा हम योगदान दे सके। और रांची इतना सुंदर शहर है तो बाइक पे जाने का एक मौका, आनंद भी हुआ है तो अच्छा लगा हमें।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचनाओं पर तेजी से अंकुश लगाया जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आए अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने आज रांची सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण

0: के बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए सशर्त जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं और केमिस्ट समुदाय ने ऑनलाइन दवा बिक्री, नकली दवाओं तथा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंप कर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। जमशेदपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उलीडीह ओपी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं।
1: एक व्यक्ति जो संदिग्ध नजर आ रहा था, जो लक्ष्मण नगर छठगांव है उसके पास बैठा था, तो उसको जब गश्ती दल ने उसे पूछताछ की यहाँ क्यों बैठे हो, तो उसके पास में एक चमकती हुई चीज नजर आई, जिसको देखने पर पता लगा कि वो एक देसी पिस्टल है और पूछताछ पर पता चला कि उसका इस्तेमाल समझदारी या फिर धमकी देने में किया जाना था।
0: जामताड़ा के दुलाडीह स्थित नगर भवन में आज जिला स्तरीय खरीफ फसल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने सरकारी स्तर पर उपलब्ध खरीफ फसलों के बीज, उर्वरक का सही मात्रा में उपयोग और असिंचित भूमि पर बेहतर कृषि कार्य कर बेहतर उत्पादन प्राप्त करने संबंधी जानकारी दी।
2: ये कर्मशाला का आज का मुख्य उद्देश्य इस बार का है कि हमारा सुखाड़ का आसार है, हर एक साइकिल में एक बार सूखा आता है, जैसे इस बार अल्नीनो आने का इफेक्ट है, वो अगर 2 वीक लेट मानसून होता है तो क्या करे, 4 वीक लेट मानसून होता है क्या करे, अगस्त के बाद क्या करे, 15 सितंबर के बाद वो अर्ली रबी का कैसे तैयारी करे ताकि उनको कम से कम क्षति और नुकसान हो, और दूसरा है कि उनको तकनीकी जानकारी जो भी कृषि विभाग की है।
0: आकाशवाणी डाल्टनगंज नियंत्रण कक्ष के तकनीशियन श्री मनोज कुमार का कल उनके पैतृक स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके आकस्मिक मृत्यु से आकाशवाणी रांची और डाल्टनगंज के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रांची जिला सीनियर तैराकी टीम के गठन के लिए जिला तैराकी संघ द्वारा 23 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक वीर बुद्धू भगत एक्वेटिक स्टेडियम होटवार के तरणताल में चयन परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यह चयन 1 जून 2026 को जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में होने वाली 15वीं झारखंड राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 को देखते हुए किया जा रहा है, जिसमें रांची की बालक बालिका, पुरुष एवं महिला टीमें भाग लेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा एआई और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक शिक्षा अहम। गांडई विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट के दौरान कहा कि सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की रखते हैं बड़ी क्षमता। देवघर में 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद पड़े रहने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र की सीबीआई जांच की मांग। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने पीएमएलए की विशेष अदालत में किया आत्मसमर्पण, अदालत ने दी सशर्त जमानत। और 15वीं झारखंड राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 के मद्देनजर रांची जिला सीनियर तैराकी टीम के लिए ट्रायल 23 मई को। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: श्रीनाथ यूनिवर्सिटी आदित्यपुर के योग विभाग और सरायकेला खरसावां जिला योगासन खेल संघ के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता 2026-27 का भव्य आयोजन हुआ। आयोजन समिति के सचिव उदय सिंहदेव ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर अवसर मिला। उन्होंने कहा कि
2: सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान से जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हुआ और इसमें बहुत सारे प्रतियोगी जो ग्रामीण क्षेत्र में छुपे हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपना खेल दिखाने का मौका मिला और आज हम लोग यहां पर डिस्ट्रिक्ट टीम का भी सिलेक्शन किए हैं और हम लोग देखे हैं कि हमारे यहां पर बहुत सारे बच्चे योगा के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं।
1: भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य गम्हरिया शंभु मंडल ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने अनियमित बिजली आपूर्ति के साथ साथ सही तरीके से केबलिंग नहीं करने तथा स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोलाबिरा क्षेत्र में काफी कम ऊंचाई पर बिजली के तार झूल रहे हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि
3: पूरा जिला में बिजली विभाग का स्थिति चरमरा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पूरा टाइम बिजली गायब ही रहता है। अगर कोलाबिरा क्षेत्र में देखा जाए तो एक स्कूल है जहां उसका आगे में तार झूला हुआ है, 2 से 3 खंभा तक का पोल है। यदि उस जगह में केबल दिया जाए तो सुरक्षित रहेगा। यदि बिजली विभाग से कोई NOC भी मांग रहा है कि भाई हमें आपका बिजली नहीं चाहिए तो NOC देने के लिए भी बिजली विभाग आनाकानी करता है, 6 महीना तक उसका समय लगाते हैं। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है गाँव घर में और उनका बिल तक अभी जल्दी में नहीं आ रहा है, 6-7 महीना में आ रहा है, हरे भरकम बिल देकर दे रहा है।
1: उत्कल सम्मेलनी द्वारा झारखंड के 3 जिलों पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में वर्ग 9 एवं 10 के उड़िया छात्रों के बीच उड़िया साहित्य की पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही है। इससे भाषा संरक्षण को लेकर उत्कल सम्मेलनी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को काफी बल मिल रहा है। जिला पर्यवेक्षक सुशील कुमार सारंगी ने कहा कि उड़िया भाषा एवं साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है ताकि छात्र अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें और भाषा के प्रति उनका लगाव बढ़े। सुशील कुमार षडंगी ने कहा कि
4: उड़िया भाषा जो किताब साहित्य किताब 9 एवं 10 का किताब हम लोग निःशुल्क वितरण किए। इस जो किताब हम लोग वितरण किए यह किताब 1998 यह किताब चल रहा था हम लोग का झारखंड में, लेकिन यह किताब बड़ी दुख की बात है कि झारखंड सरकार द्वारा यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा था। जो हम लोग के झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय दिनेश सरंगी जी के प्रयास से झारखंड में 3 जिला में वितरण किया जा रहा है और उसी के ये में आज सरायकेला में भी वितरण किया गया।
1: उत्कल सम्मेलनी द्वारा पाठ पुस्तक वितरण के माध्यम से भाषा संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान को साकार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उड़िया शिक्षकों का मानदेय पिछले 2 वर्षों से लंबित है जिससे यह अभियान कमजोर पड़ रहा है। बिना मानदेय के शिक्षक इस अभियान को प्रभावी ढंग से कैसे पूरा करेंगे यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला।
0: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। अभी आपने सुना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म दिल तेरा दीवाना के इस गाने को आदेश श्रीवास्तव के संगीत समेट के बोल।

अभी आपने सुना फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के इस गाने को अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में, भैरव और उनके बोल थे जतिन ललित के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, और अब आइए सुनवाते हैं फिल्म डोली सजा के रखना के इस गाने को MS श्री कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में या रहमान के संगीत है महबूब के।

0: तूने सपना को हाथ लगाया, हमारी इज्जत पे हाथ डाला।
1: मामा ठाकुर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
0: ज़बान खींच लूंगा तेरी।

समीर के बोल और जतिन ललित समीर के बोल और नदीम श्रवण के संगीत नूदीन तरालकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म दिलवाले के इस गाने को। और अब आइए हमको सुनवाते हैं लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म के गाने को अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के, आनंद मिलिंद के संगीत है मजरू सुल्तानपुरी के बोल। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी भेंटवार्ता में खट्टी डकार भी बीमारी का संकेत। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर अविनाश कुमार झा रांची, भेंट करता है संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों जब हम भोजन करते हैं तो डकार भी लेते हैं और जब खट्टी डकार आती है तो इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कुछ बीमारियों का संकेत दे रहा हो। जब हम खाना खाते हैं तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि खाना हमें पेट तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या कारण है? और जब डकारें आ रही हैं, जो आपका भोजन है ऐसा लगता है कि वो मुँह तक आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? उपचार कैसे करें? सावधानियां आपने जीवन में किन किन बातों का रखें और इसका लक्षण क्या है कि कौन सी बीमारियों को ये बताने जा रहा है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं लेप्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार झा। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। खाना खाने के बाद खट्टी ढकारें आना किस बात का संकेत देता है?
2: आज के दिन में अक्सर हम मरीज हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें अनपथ सा लगता है, खाना जैसे लगता है कि वापस मुंह में आ रहा है, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होता है, सीने में दर्द होता है। इसे साइंटिफिक टर्म में GERD GERD GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। नॉर्मल जो हम लोग खाना खाते हैं ये हमारे मुँह के बाद एक नली के रास्ते हमारे स्टमक में जाती है। इस नली को हम इसोफेगस कहते हैं और स्टमक में पहुंचने के बाद वो खाने छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं, उसके बाद वो खाना छोटी नली में जाता है, तत्पश्चात वो हमारी बनी आंत में जाता है और आंत के रास्ते बाद वो मल के रास्ते बाहर आता है। जब खाना हमारे स्टमक में पहुंचने के बाद आगे ना जाकर वापस हमारे खाने की नली यानी कि ऊपर वाले नली में आए, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, ऐसे कंडीशन को GERD कहा जाता है।

0: जब ये खाना जो हमारे इसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है तो दोनों जहां मिलते हैं वहां पर एक वाल्व होता है जिसे हम लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि वहां का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि स्टमक का प्रेशर बढ़ा रहता है और खाना ऊपर आ जाता है। जैसे कि आज की ज़िंदगी में लोगों को स्मोकिंग की आदत, शराब पीने की आदत, कॉफ़ी चाय पीने की आदत है। ये सब चीज़ें हमारे स्फिंक्टर वाल्व को कमज़ोर करती हैं, जिसके कारण होता है कि कभी भी हमारा प्रेशर अगर पेट के अंदर बढ़ता है तो वो खाना आगे न जाकर वापस इसोफेगस में आ जाता है, तब गर्ड की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा कारण होता है कि स्टमक जो है वो वहाँ एसिड बनता है, मेनली वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हमारे फूड के जो भी हम खान भोजन खाते हैं उसको पचाने में काफ़ी सहायक होता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि ये एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शराब पीने से, सिगरेट का सेवन करने से। कई बार लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, कहीं शरीर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, तुरंत वो दवा खाते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें एसिड का ज़्यादा बनना होता है, जैसे कि एक रेयर बीमारी है जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम या गैस्ट्रिनोमा। ऐसी बीमारियां हैं जिनमें एसिड का प्रोडक्शन या बनना ज़्यादा होता है। तीसरे चीज़ होती है कि जो पेट का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापे के कारण, प्रेगनेंसी के कारण, या हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। कहीं भी हम पार्टी में गए या कहीं भी किसी फंक्शन में गए तो खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, वैसे कंडीशन में पेट का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और वो खाना वापस इसोफेगस में आने लगता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि खाना आगे नहीं जाता है, पेट में वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि आम जिंदगी में कहें हम डायबिटीज़, डायबिटीज़ पेशेंट में अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो स्टमक का मूवमेंट नहीं होता है, उसे हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं, जिसमें कि खाना आगे ना जाता है, खाना स्टमक में ही जमा रहता है। ऐसे करने से स्टमक का प्रेशर बढ़ता है और वो खाना वापस हमारे इसोफेगस में आ जाता है। एक कंडीशन होता है हर्निया, हाइटस हर्निया कहते हैं, जो खाने की नली होती है वो हमारे सीने के बीच से होते हुए एक परत होती है जिसे कहते हैं डायफ्राम, जो हमारे सीने को और पेट को अलग करती है। तो इसोफेगस उस वहाँ से एक छोटी से छिद्र से स्टमक में आता है। कई कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें वो छिद्र काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और ऐसे में हमारा स्टमक का हिस्सा खींच के ऊपर चला जाता है और उसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं। तो स्टमक का जो भी कंटेंट होता है, पेट का जो भी कंटेंट होता है, फूड पार्टिकल्स, वो इसोफेगस में आ जाता है और हार्टबर्न की शिकायत होती है, खाना बार बार मुंह में आता है।
1: तो ये जब बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है तो फिर क्या क्या लक्षण दिखने लग जाते हैं कि हम सावधान हो जाएं और उपचार शुरू कर दें?
0: सही कहा आपने, मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है वो मरीज ये शिकायत लेके आते हैं कि सर हमारे सीने में काफ़ी जलन, हमेशा जलन जैसा रहता है। कहेंगे कि खाना खा लिया, जैसे लेटने जाते हैं लगता है खाना वापस मुंह में आ गया। ये स्पेशली खाना खाने के बाद या लेटते वक्त उत्पन्न होता है। दूसरा होता है कि सीने में दर्द होना, कहेंगे वो बताएंगे कि सीने के बीच में दर्द होता है। कई बार ये लक्षण हार्ट की जो बीमारी होती है, हृदयाघात का भी होता है। कई बार होता है कि वो बोलेंगे कि हम जो खाना खाते हैं, खाना निगलने में उन्हें काफ़ी दर्द होता है या तकलीफ़ होती है। कई बार उन्हें बिना दर्द के ही खाना जाता है लेकिन तकलीफ़ होती है, और कई बार उसके साथ साथ दर्द भी होता है। इसे हम डिसफेजिया या ऑर्डिनोफेजिया कहते हैं। अगर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं तो पेट का, जैसा मैंने कहा कि वो एसिड बनता है स्टमक में, वो बार बार अगर इसोफेगस में आए तो वो अल्सर बना देता है। अल्सर के कारण खून का प्रसाव होता है और मरीज कई दिनों बाद ये कह के आते हैं कि सर हमें बहुत हमेशा कमजोरी लगती है, हमारे शरीर में जान नहीं लगता, हम ज़्यादा चल भी नहीं सकते, हमेशा तकलीफ रहती है। और आगे चल के 10 साल 15 साल बाद अगर लोग अब इसका प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, एहतियात नहीं बरतते हैं और इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये कैंसर का भी रूप ले सकता है।
1: जी, कैसे इसका उपचार किया जाता है, कौन कौन सी जांचें की जाती है और मरीज कितना प्रतिशत ठीक हो जाता है? क्या मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है या उसे बहुत सारी सावधानियां अपने जीवन में रखनी
0: नहीं,
1: पड़ती
0: आपने बिल्कुल सही जवाब कहा। जांच मुख्यतः जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है एंडोस्कोपी, यह रूटीन प्रोसेस है। इसमें हम एक दूरबीन का रास्ते पाचन क्रिया को हम देखते हैं, पाचन के लिए ये जो इसोफेगस होता है उसे देखा जाता है। यह डे केयर प्रोसेस है, आप जाके 2 घंटे में सारा जाँच करा के आ सकते हैं। बार बार अगर मरीज ये कहते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रहा है तो ये देखा जाता है कि ये स्टमक का जो एसिड है वो कितनी मर्तबा आता है आपके इसोफेगस में। इसके लिए हम 24 आवर्स

0: कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितने देर तक वो एक्सपोज होता है, इसको हम साइंटिफिकली मेजर करते हैं पीएच से। हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच है वो होता है 3 to 5, 3 से 5 के बीच में होता है, और हमारे इसोफेगस का जो पीएच होता है वो इनसे ज़्यादा होता है। जब बार बार गैस्ट्रिक जूस हमारे इसोफेगस में आता है तो इसको हम पीएच मॉनिटरिंग से देखते हैं कि इसमें पीएच कितना चेंज हो रहा है, और ये पीएच आमतौर 2 से 4 के बीच में पाया जाता है इस बीमारी में। तो इससे हम 100% श्योर हो जाते हैं कि मरीज़ को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, तब हम उन्हें बताते हैं कि आपका इलाज कैसे कैसे हो सकता है और आपके लिए बेहतर इलाज क्या है। अगर मरीज़ को लक्षण बहुत कम है, प्रायः ये जो रिफ्लक्स डिजीज़ है मरीज़ की डाइट लाइफ स्टाइल से पर निर्भर करता है। आज के समय में अक्सर लोग स्मोकिंग, शराब का सेवन करना, कहीं पर भी खाने पर कंट्रोल नहीं होना, मसाला ज़्यादा यूज करना, ये सब करते हैं। तो हम मरीज़ को पहले समझाते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है, आपको इन चीज़ों को, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो सिंपल एंटासिड्स या दवा होती है गैस की वो देते हैं, और उनको 15 दिन पे हम बुलाते हैं देखने के लिए कि ये सब चेंज करने के बाद उनमें कितना बदलाव आया है। जो मरीज शुरुआती लक्षण में ही डॉक्टर से संपर्क करते हैं वो प्रायः ठीक हो जाते हैं। फिर इस बात का देखना पड़ता है कि मरीज़ जैसे कि मोटापे से ग्रसित है या और कोई बीमारी उनको है, जैसे डायबिटीज़ है, कब्जियत की शिकायत है, तो हम उनको इनके साथ साथ जो एसोसिएटेड बीमारी हो उसको भी ठीक करने की का परामर्श देते हैं कि सिर्फ दवा खाने से ये नहीं होगा, जिस जो रूट कॉज है इसका, जो बीमारी का कारण है, उसे भी ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ये होती है। सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम मरीजों में होती है, जैसा कि मैंने कहा कि हायटल हर्निया किसी को अगर होता है, ऐसे मरीजों को ही हम सर्जरी का सुझाव देते हैं, नहीं तो मरीज जो है सो दवा से और अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को जो बदलती जीवन शैली है, जो बिगड़ता खान पान है और खाते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे खान पान में किन किन चीज़ों का समावेश करें और संतुलित भोजन का सेवन करें ताकि आप स्वस्थ रहें और इस तरह की बीमारियां हैं आप तक नहीं पहुंचे।
0: बीमारी को समझने के लिए या तो आपका जागरूक होना ज़रूरी है या बीमारी को ठीक होने के लिए भी आपको जागरूक होना ज़रूरी है। किसी भी बीमारी का इलाज उसके रूट कॉज में ही है, अगर हम उस कारण को दूर करते हैं तो हम बीमारी को भी अपने से दूर कर रहे हैं। आज के समय में आपका लाइफस्टाइल, खान पान का शैली, इसे अगर आप सुधारते हैं, सिगरेट पीना, शराब का सेवन करना, ज़्यादा पेन किलर खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, इन चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हैं, तेल मसाला का सेवन कम करना और एक बार में खूब नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाएं, 2-3 घंटे के अंतराल पर खाएं, जिस हिसाब से आप खाते हैं उस हिसाब से आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो, आप व्यायाम करें, इन चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो आप बेहतर हो सकते हैं।
1: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, संतुलित आहार जब आप खाएंगे तो आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, और आप जब खुश रहेंगे तो पूरा परिवार आपका खुशहाल रहेगा और एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश कुमार झा, इस सावधानी आपने जीवन में लगा।
0: नहीं, आपने बिल्कुल सही जवाब कहा। जांच मुख्यतः जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होता है एंडोस्कोपी, ये रूटीन प्रोसेस है, इसमें हम एक दूरबीन का रास्ते पाचन क्रिया को हम देखते हैं, पाचन के लिए ये जो इसोफेगस होता है उसे देखा जाता है, ये डे केयर प्रोसेस है, आप जाके 2 घंटे में सारा जांच करा के आ सकते हैं। बार बार अगर मरीज ये कहते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रहा है तो ये देखा जाता है कि ये स्टमक का जो एसिड है वो कितनी मरतबा आता है आपके इसोफेगस में, इसके लिए हम 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितने देर तक वो एक्सपोज होता है, इसको हम साइंटिफिकली मेजर करते हैं पीएच से। हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच है वो होता है 3 to 5, 3 से 5 के बीच में होता है, और हमारे इसोफेगस का जो पीएच होता है वो इनसे ज़्यादा होता है। जब बार बार गैस्ट्रिक जूस हमारे इसोफेगस में आता है तो इसको हम पीएच मॉनिटरिंग से देखते हैं कि इसमें पीएच कितना चेंज हो रहा है, और ये पीएच आमतौर 2 से 4 के बीच में पाया जाता है इस बीमारी में। तो इससे हम 100% श्योर हो जाते हैं कि मरीज़ को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, तब हम उन्हें बताते हैं कि आपका इलाज कैसे कैसे हो सकता है और आपके लिए बेहतर इलाज क्या है। अगर मरीज़ को लक्षण बहुत कम है, प्रायः ये जो रिफ्लक्स डिजीज़ है मरीज़ की डाइट लाइफ स्टाइल से पर निर्भर करता है। आज के समय में अक्सर लोग स्मोकिंग, शराब का सेवन करना, कहीं पर भी खाने पर कंट्रोल नहीं होना, मसाला ज़्यादा यूज करना, ये सब करते हैं। तो हम मरीज को पहले

0: समझाते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है, आपको इन चीज़ों को, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो सिंपल एंटासिड्स या दवा होती है गैस की, वो देते हैं और उनको 15 दिन पे हम बुलाते हैं देखने के लिए कि ये सब चेंज करने के बाद उनमें कितना बदलाव आया है। जो मरीज़ शुरुआती लक्षण में ही डॉक्टर से संपर्क करते हैं वो प्रायः ठीक हो जाते हैं। फिर इस बात का देखना पड़ता है कि मरीज़ जैसे कि मोटापे से ग्रसित है या और कोई बीमारी उनको है, जैसे डायबिटीज़ है, कब्जियत की शिकायत है, तो हम उनको इनके साथ साथ जो एसोसिएटेड बीमारी हो उसको भी ठीक करने की का परामर्श देते हैं कि सिर्फ दवा खाने से ये नहीं होगा, जिस जो रूट कॉज है इसका, जो बीमारी का कारण है, उसे भी ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ये होती है। सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम मरीज़ों में होती है, जैसा कि मैंने कहा कि हायटल हर्निया किसी को अगर होता है, ऐसे मरीजों को ही हम सर्जरी का सुझाव देते हैं, नहीं तो मरीज़ जो है सो दवा से और अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को, जो बदलती जीवन शैली है, जो बिगड़ता खान पान है और खाते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे खान पान में किन किन चीज़ों का समावेश करें और संतुलित भोजन का सेवन करें ताकि आप स्वस्थ रहें और इस तरह की बीमारियां हैं आप तक नहीं पहुंचे।
0: बीमारी को समझने के लिए या तो आपका जागरूक होना ज़रूरी है या बीमारी को ठीक होने के लिए भी आपको जागरूक होना ज़रूरी है। किसी भी बीमारी का इलाज उसके रूट कॉज में ही है, अगर हम उस कारण को दूर करते हैं तो हम बीमारी को भी अपने से दूर कर रहे हैं। आज के समय में आपका लाइफस्टाइल, खान पान का शैली, इसे अगर आप सुधारते हैं, सिगरेट पीना, शराब का सेवन करना, ज़्यादा पेन किलर खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, इन चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हैं, तेल मसाला का सेवन कम करना और एक बार में खूब नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाएं, 2-3 घंटे के अंतराल पर खाएं, जिस हिसाब से आप खाते हैं उस हिसाब से आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो, आप व्यायाम करें, इन चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो आप बेहतर हो सकते हैं।
1: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, संतुलित आहार जब आप खाएंगे तो आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, और आप जब खुश रहेंगे तो पूरा परिवार आपका खुशहाल रहेगा और एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश कुमार झा, लेप्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रो सर्जन, आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, कल एक फिर नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार और आज का दिन आपका शुभ एवं मंगलमय हो।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में कुछ ही पलों में रात्रि के 8 बजने को हम लेकर हाजिर हैं चित्रपट से फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूँ, इस फिल्म के गाने को सुना उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल थे अनु मलिक के संगीत। और अब आइए सुनते हैं चित्रा की आवाज़ में जावेद अख्तर के बोल और समीर के, जावेद अख्तर के बोल हैं, ए रहमान के संगीत। आइए सुनते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म बिच्छू के गाने को, एक बार हैरी आनंद और सुनिधि चौहान की आवाज में, आनंद राज आनंद के संगीत, समीर के बोल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीतकार।

प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म के गाने को आपने सुना? आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चितपट से। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:31 हो चुके हैं। रात्रि 8:45 पर हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में शामिल होंगे, जहां सुनेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 8:45 पर 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 पर विविध भारती की प्रसारण सेवा और 9:00 रात्रि 10:00 हम लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। समीर और जतिन ललित के, समीर के बोल थे।

फिल्म प्यासा के गाने को अभी आपने सुना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में, डब्बू मल्लिक के संगीत और परवीन भारद्वाज के बोल थे। इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण सेवा छाया गीत, रात्रि 10:00

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया

0: जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए बीडीआर के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में

0: भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties.

0: दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तराखंड टिल टुमारो. मीनवाइल, सीवियर हीट वेव ग्रिप्ड सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया विद द मर्करी ब्रीचिंग द 45-degree मार्क. इन नेशनल कैपिटल एन ऑरेंज अलर्ट हैज बीन इश्यूड फॉर हीट वेव कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 days. मोर फ्रॉम आर कॉरेस्पॉन्डेंट.
1: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है. परिकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं. वजीर आजम नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया. वजीर आजम ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है. मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है. अकवामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा. भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है. और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है. अब खबरें तफसील से. भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी. इन माहिदों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए. ये माहिदे दोतरफा ताल्लुकात के खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदही करते हैं. दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए. भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं. बातचीत के बाद सहाफती बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर व खौज किया है.
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
2: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दो तरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मीशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
3: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
2: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुतहद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
3: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
2: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाजरानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
4: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
2: वजीर आजम मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटरेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दो तरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कू डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
3: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट

0: रेजिलियंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो, और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और ग़िज़ाइयत की बेहतरी के ज़िमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती तआवुन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तिसादी शराकतदारी के माहदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वह दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि CAA के तहत तहफ़ फराहम करदा 7 बिरादरियों के अराकीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले NEET UG इम्तिहान के महफूज बेहतर तरीके से और शफाफ तौर पर दोबारा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नकायस से पाक इंतजाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रधान ने यह बात आज नई दिल्ली में मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक आला सतह जायजा मीटिंग के सदारत करते हुए कही। अंडर ग्रेजुएट तिबी तालीम में दाखिले के लिए NEET UG का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनाकिद किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में 5 मुलजिमीन को अगले महीने की 2 तारीख तक अदालती तहवील में भेज दिया है। इन मुलजिमीन में मांगीलाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। अदालत ने एक दिगर मुलजिम शुभम खैरनार की CBI तहवील में तौसी कर दी है। CBI ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि खैरनार की मजीद तफ्तीश की जरूरत है ताकि उन दिगर मुलजिमीन की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके जिन्हें खैरनार ने NEET UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चे बेचे थे। पर्चा लीक होने के इल्जाम के दरमियान पिछले महीने की 3 तारीख को लिया गया NEET UG 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था। इस मामले में हुई बेजाबतगियों की जामे जांच की जिम्मेदारी का काम CBI को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मरदमशुमारी के हिस्से के तौर पर जात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जुनूबी कोरिया के दिफाई हसूलियाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरका फरोग, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका बरामदात के लिए बारावर कोशिशों को तेज करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निज़ामों में तआवुन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजह करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरतहाल के बावजूद अक़वामे मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाज़ा 6.4% लगाया है जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अक़वामे मुत्तहिदा के सीनियर माहिर माशियात इंगो पीटरले ने आलमी माशी सूरतहाल और इम्कान से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक़वामे मुत्तहिदा के इक्तसादी जायजा और पॉलिसी डिवीजन के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्य मईशत

ढांचा जाति असलाहत और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरत हाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी रहेगी। मौसमियात की एजेंसी ने गंगाई, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आइंदा 2 दिनों के लिए गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी में आइंदा 3 से 4 दिनों में गर्मी की लहर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक शहर के किसी किसी मकाम पर दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल रहने की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन के तारीखी मैदान में मुंबई इंडियंस और मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास-खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक कर लिया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग़ देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरानदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी मां कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक है वदन का निर्माण।

और दूसरी ओर एस एल भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया बीवी कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली, और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ति, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: और कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अभिनय करने वाले गिरीश कर्नाड एक मराठी फिल्म में भी मुख्य सहायक अभिनेता थे। वो मराठी फिल्म थी उंबरठा।
1: हे बगा,
2: एक है
1: वाचा ना
2: संगमवाड़ी महिला आश्रम सुप्रीम।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अनन्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बली यू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

ओंदनंदु कलदल्ली कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा छाया गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक हम बने हैं आपके साथ। विरात का कार्यक्रम रजनीगंधा फिल्मी गीतों के साथ। इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। तो आइए बने रहें हमारे साथ। पूरी एक घंटे का ये सफ़र हुआ खूबसूरत गीतों के साथ।

जावेद अख्तर के बोल, आर डी बर्मन के संगीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ में भी आपने सुना फिल्म सागर के गाने को। और अब आइए सुनते हैं आर डी बर्मन की आवाज़ में संगीत आर डी बर्मन के गुलशन बाबरा के बोल, फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

सनम तेरी कसम, आर डी बर्मन की आवाज़ में आपने इस गाने को सुना। गुलशन बाबरा के बोल थे, आर डी बर्मन के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ में सुना आपने फिल्म दरार के इस गाने को। रानी मलिक के बोल थे, अनु मलिक के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीतकार कार्यक्रम रजनीगंधा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:27 और 14 सेकेंड हुए हैं। अभी आपने सुना फिल्म अकेले मकेले तुमको गाने को उदित नारायण और आदित्य नारायण की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, अनु मलिक के संगीत।

विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ में समीर केबूल नदीम श्रवण के संगीत फिल्म दीवाने के इस गाने को आपने सुना। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:53 हुए हैं। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा की आखिरी पेशकश फिल्म त्रिदेव के इस गाने को मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ में। कल्याण जी आनंद जी के संगीत हैं, आनंद बख्शी के बोल। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा ही समाप्त होता है। हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार।

अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि की 11 बजने को है कुछ ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया

से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपके से हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपके